सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, रक्तदान। वाचन धर्मेंद्र राठौर का है।
1: हमारे देश, हमारी संस्कृति में दान की परंपरा अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दान, जिसे हमारे शास्त्रों में सत्कर्म माना जाता है, इसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना। जहाँ स्वार्थ नहीं होता, वहाँ परहित की भावना होती है, और परहित से ही सच्चे और परम सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि दान का कोई मोल नहीं होता, यह तो अनमोल होता है। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे धन दान, विद्या दान, श्रम दान, कन्या दान, गोदान, अंगदान इत्यादि। परंतु समस्त दानों में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ दान है रक्तदान। रक्तदान दान ही नहीं, महादान है। रक्तदान से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। जब हम रक्तदान करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से केवल रक्तदान करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम एक जीवन बचा रहे होते हैं। रक्तदाता एक जीवन दाता ही होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य का सहारा होता है, और रक्तदान द्वारा हम किसी की डूबती सांसों में जीवन भर सकते हैं। और यह सेवा ईश्वर की भक्ति से कम नहीं होती। कहते हैं, धन पवित्र सेवा करी, तन पवित्र करी रक्तदान। अर्थात अगर आप अपने धन से किसी की सेवा करते हैं तो धन पवित्र हो जाता है, लेकिन यदि आप अपने रक्त का दान करते हैं तो आपका शरीर ही पवित्र हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति अपने इस जन्म को तथा अगले जन्म को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के दान पुण्य करता है, परंतु वह दान जो किसी मृत्यु का क्रास बनने जा रहे व्यक्ति का जीवन बचाता है, उसे महादान ही कहा जा सकता है। रक्तदान करके किसी को नया जीवन देने वाला व्यक्ति सर्वत्र दुआ ही पाता है, और कई वर्षों की तपस्या का फल चंद लम्हों में ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए रक्तदान को संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम दान स्वीकार किया गया है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमारे द्वारा किए गए रक्तदान से कई जिंदगी बचती हैं। रक्तदान का महत्व हमें तब समझ में आता है जब कोई हमारा अपना या कोई अन्य व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा होता है। रक्तदान के द्वारा जहां हम किसी की जान बचा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें एक आत्म संतुष्टि भी मिलती है। रक्तदान मानवता का परिचायक है, जो बिना किसी भेदभाव, जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज में एकता की भावना को जागृत करता है। जैसे हमारे जीवन का हर क्षण कीमती होता है, वैसे ही किसी के जीवन की रक्षा के लिए रक्त का हर एक बूंद अमूल्य होता है, जो किसी को दोबारा जीवन दे सकता है। इसलिए बच्चों के लिए कीजिए विद्यादान, बड़ों के लिए कीजिए सेवादान, समाज में दीजिए अपना योगदान, पर मानवता के लिए कीजिए रक्तदान। जैसे प्यार से बच्चे खुश होते हैं, आदर देने से बड़े खुश होते हैं, दया का भाव रखने से जीव जंतु खुश होते हैं, वैसे ही रक्तदान से तो स्वयं परमपिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं। रक्तदान करने वाले भगवान तो नहीं, पर महान जरूर होते हैं। क्योंकि जो अन्न देता है वह अन्नदाता, जो विद्या देता है वह विद्यादाता, धन देने वाला धन दाता, परंतु जो रक्त देता है वह जीवनदाता कहलाता है। रक्तदान से हमें कई आत्माओं की दुआएं तो मिलती ही हैं, हमारी आत्मा भी हमें धन्यवाद देती हैं। हम स्वयं में भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे समुदाय का हिस्सा हैं जो कई जीवनों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। रक्तदान दूसरों का जीवन बचाने के साथ साथ खुद की सेहत भी दुरुस्त करता है। शरीर में आयरन का संतुलन बना रहता है और कई घातक बीमारियों का खतरा भी कम कर देता है। हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त हमारे जीवन जीने का आधार होता है। जिंदगी का यह अनमोल वरदान

0: ईश्वर ने हर प्राणी के शरीर में प्रवाहित किया है और यह हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित होता है। लेकिन कई बार जिंदगी के दिए सिर्फ इसलिए बुझ जाते हैं कि जब किसी कारणवश इसकी कमी हो जाती है और मौत से जूझते हुए व्यक्ति के लिए इसका मोल अनमोल हो जाता है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। जरा सोचें, आज किसी को आपके रक्त की आवश्यकता हो सकती है तो शायद कल आपको भी किसी के रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। रक्तदान द्वारा किसी को नवजीवन देकर जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है उसका न तो कोई मूल्यांकन किया जा सकता है और न ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता। इसलिए ये संकल्प ले, रक्तदान है महादान, ये जन जन को समझाएं, रक्त की हर एक बूंद को परहित में ही लगाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, रक्तदान। वाचन स्वर धर्मेंद्र राठौर का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है भिंडी की फसल की देखभाल और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। गर्मा भिंडी की फसल इस समय आपके खेत में है। बहुत से किसान भाइयों ने समय पर बुआई कर ली है और समय पर बुआई जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल की है वो लगभग एक महीने की हो चुकी होगी और आने वाले दिनों में उसमें जो है फल लगेंगे। इस समय ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन लोगों ने भिंडी की फसल की बुआई नहीं की है वे अभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं, गर्मा की भिंडी की बुआई। खास करके उसमें ध्यान ये रखना है कि तापक्रम कम होने के कारण बीजों का अंकुरण जो है वो सही ढंग से नहीं होता है। तो पहले आप भिंडी के बीजों को 24 घंटे पानी में भिगो लें और उसके बाद राख में बीजों को मिला करके किसी पत्ते में लपेट करके रख दें। जब वे अंकुरित हो जाएं तब आप खेत में उनकी बुआई करें। जिन किसान भाइयों के खेत में पहले से भिंडी की फसल लगी हुई है तो वे इस समय सिंचाई का विशेष प्रबंध रखें, क्योंकि कभी तापक्रम ज़्यादा हो जाता है, कभी तापक्रम कम होता है। तो जब तापक्रम ज़्यादा होगा तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी फसल को, और यदि अचानक तापक्रम गिर जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो उस समय पाला की भी आशंका होती है। तो उस समय भी यदि हल्की सिंचाई खेत में की जाए तो तापक्रम जो है वो नियंत्रित रहता है और इससे जो है आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। खाद तथा उर्वरक आप बुआई के पहले डाल ही देते हैं। यदि भिंडी की फसल में कहीं आपको लगे कि फसल जो है पोषण न्यूनता की स्थिति दिखला रही है, यानी कि पत्तियों पर कहीं आपको कांसे रंग की जो है सिराएं दिखे या पौधा कमज़ोर हो, बढ़ नहीं रहा हो, तो उसके लिए आप किसी भी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उसमें खाद तथा उर्वरक इस समय डाल सकते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता उतनी नहीं होगी। उसके बाद बात आती है फसल सुरक्षा की, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। तो भिंडी की फसल में एक रोग बहुत लगता है जिसका नाम है पीला सीरा मोजैक रोग। ये येलो मोजैक रोग जो होता है पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखलाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे घरों में मोजैक किया हुआ रहता है, अनियमित आकार के धब्बे। बाद में ये धब्बे बड़े होते हैं, एक साथ मिलते हैं, पौधे की पत्तियां पीली होती हैं और सूख जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इस तरह से पौधा जो है वो सूखता है, इसका प्रभाव जो है फलों पर भी होता है जिससे कि उत्पादन आपका कम होता है। यह एक वायरस जनित रोग है, तो जो भी रोग वायरस से होते हैं उनकी दवा नहीं बनी है, बल्कि उसके जो वाहक जीव होते हैं जैसे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए आप खेत में इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा के प्रयोग से ये होगा कि खेत में कीड़े आपके नहीं आएंगे और वे अपने साथ वायरस नहीं लाएंगे और ये पीला सीरा मोजैक रोग जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो पौधे ग्रसित हो गए हैं उन्हें खेत से उखाड़ करके दूर ले जा करके फेंक दें, क्योंकि यदि वे खेत में रहेंगे तो दूसरे पौधे भी उस रोग से आक्रांत हो सकते हैं। उसके बाद ये कीड़ा बहुत लगता है भिंडी की फसल में, जिसे तना छेदक और फल छेदक कीड़ा कहते हैं। आप कभी कभी देखते हैं कि भिंडी के फलों में छेद पाया जाता है और वहाँ पर काले रंग का पदार्थ जमा रहता है, तो ये कीड़े के कारण होता है, जो कि फल छेदक कीड़ा होता है। और ये काले रंग का पदार्थ जो होता है वो कीड़े का

0: रिश्ता होता है। ये कीड़ा काफ़ी नुकसान करता है, धड़ों में भी छेद करता है और फल की गुणवत्ता तो इससे ख़राब होती ही है, फल बड़े भी नहीं हो पाते हैं। इस कीड़े को मारने के लिए आपको पहले से ही ध्यान देना होता है, खेत में कीड़े की उपस्थिति हो नहीं इसके लिए खेत की अंतिम जुताई के समय आपको नीम की खली या करंज की खली का प्रयोग करना चाहिए। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो ध्यान देते रहना चाहिए और कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। दानेदार दवा जो बाज़ार में आती है, फ्यूराडान है या 4-8-10G है, तो ये दानेदार दवा का भी आप प्रयोग करेंगे तो ये दवा काफ़ी कारगर होती है। लेकिन
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था भिंडी की फसल की देखभाल। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
3: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मोन

0: जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

देश वंदना के बाद कार्यक्रम वंदना में सुनिए भजन। सबसे पहले भजन सुनिए डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे की आवाज में।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।
1: एपिसोड नंबर 134 1 3 4
2: जैसे ज्ञान मार्ग।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में

श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है रक्तदान महादान, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राकेश कुमार से अजिता चौबे की बातचीत।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है स्वैच्छिक रक्तदान के फायदे। हमें जानकारी देंगे डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिन्हा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो
0: धन्यवाद
1: में।
0: मैडम।
1: डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति जब स्वैच्छिक रक्तदान करता है तो उसके क्या फायदे होते हैं?
0: सबसे पहला फायदा है कि उनका एक तरह से स्वास्थ्य का पूरा प्रशिक्षण चेकअप हो जाता है। दूसरी, उनकी 5 बीमारी का जो भी रक्तदान करते हैं उसकी जांच की जाती है,
1: जी
0: HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस का। यदि कोई भी उसमें गड़बड़ी निकलती है तो फिर उनको चिट्ठी लिख के बुलाई जाती है आगे की जांच के लिए। उसके बाद के फायदा है कि यदि वो कम से कम साल में 2 या 3 बार ब्लड देते हैं तो उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं कम जाती है। वो जब ब्लड देते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग एक कार्ड देते हैं, उस कार्ड के अगेंस्ट उनको या उनके किन्हीं को भी मित्र

0: को परिवार पूजवत होती है तो बिना दिए हम लोग रक्त की आपूर्ति करते हैं या उसके कंपोनेंट के करते हैं।
1: मतलब जो स्वैच्छिक रक्तदान नियमित रूप से कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को ब्लड बैंक से एक कार्ड मिलता है जिसे दिखाकर कभी भी आवश्यकता पड़ने पर वो ब्लड ले सकते हैं। आप फिर उनसे रिप्लेसमेंट ब्लड नहीं मांगते हैं?
0: नहीं मैडम
1: जी। सोसाइटी को, हमारे समाज को स्वैच्छिक रक्तदान से क्या फायदा होता है?
0: समाज को तो उससे बहुत फायदा है मैडम, इसलिए कि ब्लड तो आर्टिफिशियली बनता नहीं है। किसी की जिंदगी तो बचाने के लिए सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारा कोई आदमी नहीं रहेगा तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बचेगी? इसलिए उस मानव कल्याण में रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं है। सो वो हर आदमी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, समाज को देना चाहिए। और अब तो लोग करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, डरते थे। अभी भी 15-20% में ये मिथ है कि हम देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और नया नया रक्त बनता है, जो भी रहती है कुछ रक्त के साथ और निकलता भी है।
1: डॉक्टर साहब, एक फायदा और होता है कि बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं जो कि रक्त के द्वारा फैलते हैं, यदि स्वैच्छिक रक्तदान के बाद वो टेस्टेड ब्लड जाता है किसी मरीज को तो वो उन बीमारियों से भी बच जाती है।
0: हाँ, बच जाते हैं,
1: बच जाता है हमारा समाज। अगर किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे मिलता है उसको?
0: रक्त के लिए तो एक डिमांड फॉर्म होता है, अस्पताल में है वो या प्राइवेट नर्सिंग होम में है, वो बना के देते हैं लिख करके, जिस लाइसेंस ब्लड बैंक से वो मंगाना चाहते हैं उसको एक रिक्वेस्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें लिखेंगे टू द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सच एंड सच, उसके बाद डिटेल्स ऑफ द पेशेंट, अपना दस्तखत करके रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर लिख के दे देंगे। मरीज का सैंपल उनको भेजना है, 2 ml एक वायल में, 2 ml दूसरे वायल में, जिसमें एक EDTA वायल में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। और वो डिमांड फॉर्म पर स्पष्ट लिखें कि क्या चाहिए उनको। होल ब्लड PRBC चाहिए, होल ब्लड को तो अब लोग भूल जाए हो, PRBC चाहिए, प्लेटलेट चाहिए या क्रायो चाहिए या FFP चाहिए और प्लाज्मा चाहिए। वो डिमांड आने पर फिर उनको वो, यदि वो ये PMCH के लिए हम बता रहे हैं, यदि किसी का एक्सीडेंट होके आया है, गोली लग के आया है या यूट्रस फट गया है मदर का, तो उस हालत में या बच्चा है नियोनेट, हम लोग बिना रिप्लेसमेंट किए हुए तुरंत एक यूनिट ब्लड उनको रिलीज करते हैं। और ऐसे उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी ब्लड दीजिए, ब्लड आएगा कहाँ भाई, रिप्लेस करिए। और यदि वो प्राइवेट नर्सिंग होम में है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, उनके लिए उनको प्रोसेसिंग चार्ज लगता है जो कि सरकार के द्वारा तय की गई है
1: जी।
0: ऐसे तो एक ब्लड को प्रोसेस करके बनाने में करीबन 2000 रुपये सरकार को खर्च आती है, लेकिन वो ब्लड के लिए 500 रुपये लेती है जिसका रसीद सरकार देती है, और प्लेटलेट FFP क्रायो के लिए 400 लेती है। इस तरह से इतना लेके जाने पर वो ब्लड उनको उपलब्ध हो जाएगा किसी भी लाइसेंस ब्लड बैंक से
1: जी। यानी यदि रक्तदान करना है तभी भी लाइसेंस ब्लड
0: बैंक में ही जाना चाहिए,
1: और यदि रक्त की आवश्यकता है
0: वहीं से लेना चाहिए क्योंकि वहां से टेस्टेड मिलेगा, सेफ ब्लड मिलेगा,
1: तभी भी लाइसेंस ब्लड बैंक में ही जाना चाहिए।
0: और वो जो ब्लड इशू होगा मैडम, उस पर लिखा रहेगा लाइसेंस नंबर सच एंड सच, और उस पर लिखा रहेगा कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड सिफिलिस एंड मलेरिया से फ्री है।
1: और एक यूनिट ब्लड डोनेट करने पे डॉक्टर साहब कितने लोगों को उससे फायदा होता है?
0: एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से कम 3-4 आदमी को फायदा होता है। जैसे एक को PRBC माने RBC चला जाएगा, दूसरे को प्लेटलेट चला जाएगा, तीसरे को Factor VIII माने FFP चला जाएगा, चौथे को क्रायो चला जाएगा, इतना फायदा होता है। एक यूनिट से उतनी की जिंदगी बचाई जा सकती
1: है। एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर साहब साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है?
0: चार बार। एक ब्लड डोनेशन से दूसरे ब्लड डोनेशन की ड्यूरेशन होना चाहिए कम से कम 3 महीने। 4 बार डोनेट कर सकते हैं वो
1: जी। और कौन कौन से व्यक्ति स्वैच्छिक रक्तदाता बन सकते हैं?
0: स्वैच्छिक रक्तदाता वो जिनका आयु 18 से 65 वर्ष है और वजन कम से कम 45 kg है, HB 12.5 ग्राम है, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो।
1: और डायबिटीज? और
0: डायबिटीज जो, हाँ अच्छा क्वेश्चन आपने किया, डायबिटीज आदमी हमारे पास बहुत है, जो या तो डाइट से या मेडिसिन से कंट्रोल है, ओरल मेडिसिन से, वो दे सकते हैं। जो इंसुलिन पर हैं वो नहीं दे सकते हैं। इंसुलिन वाले को नहीं देना।
1: ये बहुत अच्छी भावना के साथ किया जाने वाला दान है, जिसमें आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप किसको मदद
0: कर रहे हैं, किसकी जिंदगी बचा रहे हैं।
1: तो इसी

0: भावना को ध्यान में रखते हुए अपने श्रोताओं से भी अपील करेंगे कि रक्तदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा
1: हिस्सा
0: बनाइए
1: बनाइए। ठीक
0: और
1: है,
0: हमेशा किसी लाइसेंस ब्लड बैंक में जाइए
1: बिल्कुल
0: रक्तदान के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में विषय था स्वैच्छिक रक्तदान के फायदे। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिन्हा से अजिता चौबे की बातचीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे मल्लिका अर्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन राग शुक्ल बिलावल। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का प्रसारण होगा दिन के 10:15 पर। और बाल कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम रूपक का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण होगा शाम के 6:05 पर। आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एजबिस्टन बर्मिंघम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

सुयंतम, प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागतम्।

0: कृताय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्तरूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् यानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारम्भम् अकरोत्। एषा सेवा मण्डी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डॉनल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्देहे लक्ष्यम् ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग

के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायण ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 14 जून है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्मदिवस के बारे में। निखत जरीन, जो कि भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, इनका जन्म 14 जून 1996 ईस्वी को हुआ था। भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, इनकी जन्मतिथि भी 14 जून 1967 ईस्वी है। हिंदी फिल्मों के अभिनेता और दूरदर्शन के कलाकार हैं शेखर सुमन, इनका जन्मदिवस भी 14 जून 1960 ईस्वी को हुआ। किरण खेर, जो कि हिंदी और बांग्ला चलचित्र अभिनेत्री हैं, इनका जन्म 14 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक के आसिफ, इनका जन्म 14 जून 1922 ईस्वी को हुआ।

हीराबाई बरोदकर जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, इनका जन्म 14 जून 1905 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्र, कार्यक्रम हालचाल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज 14 जून है। 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान के करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना। रक्तदान रक्तदाता दिवस का थीम है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। और रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयासों में शामिल हो और जीवन बचाएं। भारत में

से ज्यादा एक स्थान तथा एक शिविर पर कम समय में 7 घंटों में 511 लोगों का रिकॉर्ड रक्तदान हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इसी खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारे आज के हालचाल का अंक अब यही समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे पॉप म्यूज़िक अलीसा चिनाई के आवाज़ में। इसी पॉप म्यूज़िक के साथ पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए मल्लिका अर्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन राग शुक्ल बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मल्लिका अर्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन राग शुक्ल बिलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन

0: एजुकेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र

0: सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है। फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में

ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार

0: भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार, सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists. The vibrant reception reflected the strong cultural and people-to-people ties between India and France. Our correspondent has the details.
3: Prime Minister Narendra Modi will today join French President Emmanuel Macron for the inauguration of Bharat Innovates at the

0: Times informs Anthropic has disabled its two most powerful AI models, Fable 5 and Mythos 5, on a U.S. government order under the headline, "In a First, AI Model Pulled Offline After U.S. Government Intervenes." FSS AI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front-page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled, "Fashion to Furnace, Some Luxe Gold Watches Fail the Test of Time," the Economic Times writes, "As yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth." And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात आईएमडी के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहाँ वो स्लोवाक क्यादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनदा एक कम्युनिटी इस्तकबाल तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए।

0: ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा, जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक़िद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निज़ाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान-3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा, जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निजाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहर ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक है। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं, ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फ़ायदा पहुंच सके। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6 करोड़ 90 लाख से बढ़कर

0: साल 2025 में 9 करोड़ 20 लाख हो गई है। अगले सिलसिले के जीएसटी निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में जीएसटी की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माही, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी ज़रूरतमंद को सेहतयाब करने और एक ख़ानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएं, जिम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिरा पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक

0: शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई क़ुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। मुआहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासर पहले एक रोजा बैन अवी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
6: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
7: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
6: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
7: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
6: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार। स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
9: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
10: बन गया बजट?
9: हाँ,
10: 5,000 बच गए।
9: तो नई साड़ी ले ले
10: ना,
9: पिछले महीने तो ली थी।
10: एक और
9: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
10: बढ़िया,
9: जाओ भाई।
11: RBI कहता है,
12: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
13: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
14: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
15: हर घर सूर्य घर। आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का।

0: रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पेड़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। अब समाचार विस्तार से। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इसरो ने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाला चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर केवल 14 दिनों तक ही काम कर पाया था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला यह लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। असम के जोरहाट में कल भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बिहार के 2 जवान समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार के शुभम कुमार और दानिश आलम भी शामिल हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गाँव के निवासी थे। वहीं अग्निवीर वायु दानिश आलम भोजपुर जिले के कोयलवर प्रखंड के कायम नगर के रहने वाले थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश शहीदों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण करेगा। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। बिहार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई भी दी है। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं बिहार की अमूल्य धरोहर हैं तथा GI टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए 30 जून तक सभी छात्रों की अपार ID तैयार करने का निर्देश दिया है। बिहार बोर्ड ने स्कूल प्रधानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी छात्रों की अपार ID बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही UDIS कोड के साथ अपार ID का विवरण उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एकीकृत और सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत

0: भवन में ऊर्जा विभाग की 1278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आज ही कृषि विभाग के कार्यक्रम में खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: news_patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मानसून पहुंच चुका है। मानसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि खेल व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता और मानसिक दृढ़ता के विकास के लिए प्रभावी माध्यम है। उन्होंने पटना में खेल भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि खेल केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
2: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बाल हृदय योजना के तहत कल 32 बच्चों को अहमदाबाद के लिए रवाना किया। अहमदाबाद में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का बेहतर और निशुल्क इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाल हृदय योजना के तहत अब तक 3,101 बच्चों का सफल इलाज कराया जा चुका है। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा है कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न और ट्यून्ड हॉर्न बजाने वालों वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने कहा कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक खेले गए 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 मैचों में सफलता मिली है। वहीं आज एक अन्य मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आईआईटी पटना की रिपोर्ट पर सुर्खी लगाई है, राज्य के 23 बड़े पुलों की स्थिति बेहद गंभीर, 10 पर चल रहा है काम। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार के विकास के लिए सभी को 20 घंटे करना होगा काम।

0: दैनिक जागरण का शीर्षक है, आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी खबर पर लिखा है, फ्रांस से 12 समझौते संभव, रफाल के सोर्स कोड लेने पर भी होगी बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना के विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
4: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या TV देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: आ गई सैलरी?
7: हाँ।
6: नहीं झुमके?
7: ना, पहले बचत,
6: पहले झुमके।
7: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमको का क्या?
7: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
11: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
10: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

आदाब सामीन हजरात, उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की जानिब से आज के इस पुरनूर सुबह का सलाम आप सभी को पेश है। शगुफ्ता हाजिर है आज की अंजुमन के साथ। इससे पहले कि हम आज के अंजुमन का आगाज करें, उसे रफ्तार दें, आइए एक प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। समात कीजिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में सजी है।

फजल के बाद दोबारा से अंजुमन में आप सभी का खैर मकदम है। सामिन, इंसान की ज़िंदगी के लिए जिस कदर सांसों का होना अहम है, उसी कदर जिस्म में खून का सही मकदार में रवा दवा रहना भी अहम है। ये बेहद अहमियत का हामिल इसलिए है कि कई बार हम देखते हैं कि मरीज़ को सही वक्त पर सही ब्लड ग्रुप का खून ना मिल पाने पर वो मौत के मुँह में चले जाते हैं। आपको बताएं सामिन कि हर साल 14 जून को आलमी योम अतियाए खून यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जिंदगियों की हिफाजत के लिए मनाया जाता है। इसका सबसे अहम मकसद हंगामी हालात, हादसा, कैंसर या दिगर बीमारियों में मुबतला मरीजों के लिए महफूज खून की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। इसका आगाज 2004 में WHO के जरिए किया गया। वैसे बातें और भी हैं, फिलहाल वक्त का इशारा है कि एक और गजल से अंजुमन को मुअत्तर किया जाए। ये समाप्त करते हैं एक प्यारी सी गजल।

एक बार फिर हम हाजिर हैं अंजुमन लेकर। सामिन, आपको बताएं कि एक बोतल खून बेवक्ती लोगों की जानें बचा सकती है। यह कहना गलत ना होगा कि इंसानी जिस्म में खून की रगें सबसे कीमती असासा हैं। इसके ज़रिए इंसानी जान बचाने को सबसे बड़ा सवाब करार दिया गया है। कहते हैं दोस्तों कि जो किसी ने एक इंसान की भी जान बचाई तो मानो उसने सारे इंसानों की जान बचाई। आपको बताएं कि खून देने से खून देने वाले यानी डोनर को भी कई तरह की बीमारी होने के खतरात कम हो जाते हैं। खून का अतिया करने के बाद जिस्म फौरन नए खून के खलियात बनाना शुरू कर देता है, जिससे जिस्म में ताजगी और

0: तवानाई बरकरार रहती है। साथ ही वजन में इजाफा नहीं होता, मोटापा काफ़ी हद तक आपसे दूर रहता है, क्योंकि अतिया करने से जिस्म में मौजूद इजाफी कैलोरीज कुदरती तौर पर जलती है। तो जहां आप दूसरों की जान बचाने के लिए खून का अतिया करते हैं, वहीं आपकी खुद की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। जी हाँ सामीन, हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इससे कबल आज की ख़ास पेशकश सेहतनामा की तरफ रुख करते हैं। समाप्त करते हैं नौजवानों और बच्चों में मुकम्मल गजाइत पर मबनी ये गुफ्तगू सेहतनामा।
1: सेहत और तंदुरुस्ती इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। एक तंदुरुस्त तवाना शख्सियत मुल्क और कौम का बेहतरीन सरमाया है, जबकि गैर सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी काफ़ी दुश्वारियों से भरी होती है। सेहत का दारोमदार मुतवाजन ग़िज़ा पर मुनहसर करता है। अच्छी सेहत के लिए मुतवाजन ग़िज़ा का लेना काफ़ी अहम है, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम इस बात से वाकिफ़ हों कि हमें किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। सामीन, इसी मालूमात में मजीद इजाफे के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है पटना के जाने माने डाइटिशियन सैयद मुमताज करीम को। तो डॉक्टर साहब, हम अपने स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उम्दा सेहत क्या है और इसके लिए हमें क्या इकदामात उठाने चाहिए।
2: सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। उम्दा सेहत के लिए सबसे पहले अहम जो ज़रूरी है कि आप जो ग़ज़ा ले रहे हैं वो ग़ज़ा क्या ले रहे हैं, कितने अमाउंट में आप ले रहे हैं। जैसे हमारा जो जिस्म है उस जिस्म में पानी,
1: जी,
2: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स है। तो उस ग़ज़ा को जो आप लेना चाह रहे हैं क्या आपके बॉडी के लिए वो सुटेबल है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी नहीं है, एक आम नौजवान आप हैं,
1: जी
2: तो आम नौजवान अगर है तो कितने अमाउंट में हम कौन सा चीज़ ले रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले एक BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके वो निकालते हैं। अगर एग्जाम्पल ले, एक 22 साल का नौजवान है और उन्हें 2000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। 2000 कैलोरी में अनाज कितना लेना है, प्रोटीन कितना मात्रा में लेना है, फैट कितना मात्रा में लेना है, दूध कितना लेना है, इसको एक कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम उनको बताएंगे कि आप इतना लें, हमें चाहिए 2000 कैलोरी, तो अनाज मुझे लेना है 60 ग्राम, यानी फॉर द एग्जाम्पल। मगर वो अनाज से ज़्यादा वो जंक फूड ले रहे हैं,
1: जी,
2: क्योंकि अभी जो उन्होंने खाया क्या उसमें वो न्यूट्रिशन है, क्या उसको लेने से कुछ फायदा होगा या नहीं, सिर्फ पेट भर गया वो उनका मकसद है।
1: यकीनन डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग़िज़ा की मकदार सबसे अहम है, हम क्या खा रहे हैं ये भी काफ़ी अहम है। तो डॉक्टर साहब, नौजवानों के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो वो आपकी नज़र में क्या होगा?
2: अगर हम एक नौजवान के बारे में बात करते हैं, वो सुबह उठते हैं, नॉर्मल एक गिलास वो पानी पी लें, नॉर्मल ग्लास पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाए, नट्स ले लें, नट्स लेने के बाद फिर वो एक नॉर्मल वॉकिंग करें, एक कुछ एक्सरसाइज जो होम में जो अपने घर पे भी वो कर सकते हैं वॉकिंग की शक्ल में, जैसा उनके लिए सहूलत हो, नहीं कि 3 घंटे के अंदर वो नाश्ता कर लें। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है एडल्टों में, खासकर लड़कियों में, वो सुबह का नाश्ता स्कीप कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं। उनको अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, इसमें तो वो तो घर पे ही थी, मगर इससे पहले जो हम लोग ने देखा, एक सर्वे किया था, उस सर्वे में ये देखा कि जो लड़के हैं वो, ये लड़कियां हो जो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, वो क्लास की वजह से सुबह का नाश्ता छोड़ ही देती हैं। अगर इन बिटवीन अगर उन्हें कुछ ख्वाहिश होती खाने की है, तो बाहर का जो ओपन मार्केट में जो खुला फूड रहता है वो ले लेते हैं, तो पेट तो उनका भर जाता है मगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिलता।
1: जी, हाँ
2: इसलिए
1: जी,
2: अपने कॉलेज लाइफ में आप सुबह का ब्रेकफास्ट को स्किप एकदम ना करें, ब्रेकफास्ट करके ही कॉलेज को अटेंड करें। अगर फिर भी जल्दी है तो ब्रेकफास्ट को कैरी करें, और डेली एक फल जो सीजनल फल होता है वो एक फल जरूर वो लें। इसी तरीके से प्रॉपर वे में वो लंच करें, इवनिंग में भी नहीं होता, स्नैक्स कुछ भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स हो गया या भुना चना वगैरह हो गया इस तरीके, और रात के खाने को थोड़ा हल्का ले। यहाँ पर क्या होता है कि लोग सुबह का नाश्ता बहुत कम अमाउंट, कम मात्रा में लेते हैं और रात के खाने को काफ़ी हेवी कर देते हैं, जबकि रात के खाने को काफ़ी कम में लेना, क्योंकि रात में जो आप ले रहे हैं वो लेने से आप क्या एक रेस्ट कर रहे हैं, एक आराम ही कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है। सुबह का नाश्ता आप हेवी लेते हैं तो होल डे आपका बॉडी का क्या हो, कैलोरी बर्न हो रहा है, आपको एनर्जी उससे जा रहा है। रात में तो सिर्फ सोने के अलावा कुछ है नहीं नॉर्मली का, मगर यहां हम क्या करते, उल्टा करते हैं। इस चीज को भी चेंज करना होगा।
1: जी, हाँ जी।

0: बहुत ही सही बात आपने कही कि बैलेंस डाइट इसमें
1: जी
0: काफ़ी अहम रोल है, जिसमें घर के नाश्ते और घर के खाने को प्रीफर करें, एक फल ज़रूर लें और बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज़ करें और कोशिश करें कि कुछ वर्जिश भी हो।
1: जी
0: तो वर्जिश में अगर आप कहेंगे तो हल्की फुल्की वर्जिश ऐसी कौन सी हो जो आज के मसरूफियत वाली ज़िंदगी में आसानी से कर सकें?
1: वर्जिश में सबसे इजी वर्जिश नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं या स्टिचिंग वो कर सकते हैं, वो इजी वे में 10 मिनट में एंड हो जाता है और आपके घर पे ही हो जाता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी जिम वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, बात हो रही है न्यूट्रिशन की, जिसमें बच्चों की और नौजवानों के सेहत के मुताल्लिक गुफ्तगू है। तो इसमें जो बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट के लेने में इंसान कभी-कभी कोताही भी कर लेता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उस कमी को हम फुलफिल कर सकते हैं?
1: डेली उनका जो डाइट हैबिट्स है वो अगर वो प्रॉपर वे में ले रहे हैं, और कभी कभी ऐसा स्कीप हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, कभी अगर वो स्कीप हो जाता है तो वो देखें कि हमने क्या स्कीप किया। जैसे कि लोग आज की डेट में प्रोटीन बहुत लेस अमाउंट में ले रहे हैं, अनाज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेते हैं मगर प्रोटीन कम लेते हैं, मगर मेरा ख्याल ये है कि जोर होना चाहिए। अगर वो प्रोटीन वाला भोजन अगर नहीं करते हैं, या अगर सपोज वो दाल दोपहर में, वो जैसे आपने कहा कि अगर वो छोड़ देते, स्कीप कर देते हैं, दाल उन्होंने नहीं लिया दोपहर में खाने में, दाल नहीं है तो रात में एक वो अंडा ले ले, वो भी प्रोटीन है उसमें, या फिर सत्तू दाल की रोटी ले ले उसमें भी प्रोटीन हो गया। तो इस तरह प्रोटीन वाला भोजन उनको प्रॉपर वे में उनको करते रहना चाहिए अपना, जिससे थोड़ा सा बॉडी काफी मेंटेन रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, यूथ और बच्चे यानी हमारी नई नस्ल, इनकी सेहत हम तमाम लोगों के लिए काफ़ी अहम है। अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो मुतवाजन ग़िज़ा, ये उनके लिए प्रॉपर क्या सजेस्ट होता है?
1: बैलेंस डाइट अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह में अगर वो नाश्ता करते हैं, नाश्ते में वो 2 रोटी लेते हैं, 3 रोटी लेते हैं, मैं एक 22 साल के नौजवान का मैं आपको डाइट बता रहा हूँ, अगर 22 साल का नौजवान नाश्ते में 3 रोटी लेता है, 3 रोटी के साथ वो 150 ग्राम कर्ड्स वो ले, या 200 ml वो दूध ले लें, या एक अंडा वो ले, दूध अंडा या दही, इस 3 में से कुछ एक वो ले। इसी तरीके से दोपहर के खाने में एक बॉल अगर वो चावल ले रहे हैं तो उस चावल के साथ वो दाल लें, सब्जी लें, सब्जी के साथ वो मट्ठे को जरूर लें, जिसको छाछ बोलते हैं, छाछ हो गया, रायता हो गया, ये इसका इंटेक जरूर करें। और साथ ही साथ दाल जो ले रहे हैं वो दाल का भी मादा को वो बढ़ाएं, वो कि दाल कम से कम लोग यूज करते हैं।
0: प्रोटीन का
1: हाँ,
0: इनटेक।
1: रात का वो खाना ले रहे हैं तो रात के खाने में अगर सुबह में उन्होंने दही लिया है नाश्ते में तो रात में वो दूध ले लें, अगर सुबह में उन्होंने दूध लिया है तो रात में वो दही ले, यानी प्रोटीन युक्त जो बोलते हैं वो होना जरूरी है।
0: जी, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स के साथ साथ तमाम ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी अदम मौजूदगी के बिना पर हमारा जिस्म बिल्कुल नहीफ और कमज़ोर हो जाएगा?
1: वो तो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे बॉडी को मेंटेन करता है और बैलेंस रखता है। प्रोटीन ज्यादा भी जिस्म के लिए खराब भी है और कम भी है, अगर कम ले रहे हैं तो आपका जो बॉडी जिस्म है वो एक ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे वो खराब होता चला जाएगा, फिर आप माल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे।
0: जी, माल न्यूट्रिशन की डॉक्टर साहब बात हुई तो हम आपसे इस मौजू पे भी वजाहत चाहेंगे कि माल न्यूट्रिशन असल में है क्या?
1: माल न्यूट्रिशन यानी एक नौजवान है, वो सारा कुछ खाता है फिर भी उसका ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, ग्रोथ होना चाहिए ए बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो वेट नहीं है, वो अंडर वेट है। ये जो 42-45 kg है यानी ये माल न्यूट्रिशन में है, यानी गजा तो लिया है, खाना तो खाया है मगर उन्होंने बैलेंस डाइट नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन में आ गए हैं।
0: जी, एडल्ट और टीनेजर में ख़ास तौर पे हमें इस तरह की कमी देखने को मिलती है कि वो अपने ग़िज़ा से, अपने काम के मुनासिबत से समझौता कर लेते हैं। आपने अहम जानकारी दी कि खाने के मुताल्लिक कोई भी समझौता ना करें और बैलेंस डाइट का जो रूल है वो फॉलो करें। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने वर्जिश की बात की और आज हमारे नौजवान वर्जिश की तरफ भी आमादा हैं, लेकिन वर्जिश के साथ साथ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी वो कर लेते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप उस पे भी कुछ रोशनी डालें।
1: खासकर हमारे जो टीनेजर हैं जो जिम जाते हैं, जिम जाने के दौरान जो वहाँ पर ट्रेनर रहते हैं उन्हें तरह तरह का मशवरा देते हैं कि आप ये दवा लें।

0: करेंगे तो आपका ये मसल्स ग्रो करेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसे नौजवानों से सलाह देता हूँ, आप ऐसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दवाओं का इस्तेमाल करने से अभी तो फर्क आपको अच्छा लगेगा देखने में, मगर आने वाले दिनों में आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में ज्वाइंट पेन जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। बॉडी को डेवलप कर देगा मगर वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। जैसे ही आप वो दवा को छोड़ेंगे, वैसे ही आप जैसे पहले थे उससे भी खराब आपका जिस्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ लेना है तो आप घर का बना हुआ गजा है उसको लें, या प्रोटीन वाले अगर भोजन लेना है, आप 2 अंडा नहीं देके आप 4 अंडा लेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप बाजार में बहुत सारी दवाएं मिल रही हैं जो डिफरेंट टाइप्स की, कि ये प्रोटीन लेने से ये डेवलपमेंट होगा, ये प्रोटीन लेने से ये डेवलपमेंट होगा। मैं सलाह देता हूँ ऐसे प्रोडक्ट को वो ना लें आप, और घर का बना हुआ ही प्रोटीन वाला भोजन वो ज्यादा से ज्यादा करें।
1: जी, बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी नौजवानों और बच्चों के मुतालिक। जिस्मानी तहफ़ सबसे ज़्यादा अहम है। नाश्ते को बिल्कुल स्किप ना करें और वर्जिश करें, जिससे कि हमारा जो नशोनुमा है वो खूबसूरत भी हो और ज़ाहरी के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी हम सेहतमंद रह सकें। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर और ममनून हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: सामी, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इससे कबल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल, आइए समात करते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी वफाओं का सिला कब मिला, मेरी वफाओं का सिला कब मिला, तू जफाओं के साथ ही हर पल मिला।

सामिन, कार्ल लंडस्टाइनर की योम पैदाइश की याद में आज का ये दिन मनाया जाता है। उन्होंने ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की दरियाफ्त की थी। कार्ल लंडस्टाइनर नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान थे। आपको बता दें सामिन कि जैसे वोट देने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी ज़रूरी है, वैसे ही आप सेहतमंद 18 साल के अफराद अगर हैं तो आप अपना खून अतिया कर सकते हैं। तो वहीं आपका वज़न कम से कम 45 से 50 किलो होना भी लाजमी हो जाता है। जब आप अपनों की जान बचाने के लिए खून देने का इरादा करते हैं तो आपको कोई ऐसी बीमारी भी ना हो जिससे कि मरीज को नफा की जगह नुकसान हो जाए। याद रखिए, हमारी सेहत से ही हम दूसरों को सेहतमंद ज़िंदगी देने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर हम खुद सेहतमंद नहीं होंगे तो हमारे जिस्म से निकला हुआ खून क्या पता किसी की ज़िंदगी की जगह पर, माज़अल्लाह, किसी की मौत की वजह ना बन जाए। इसीलिए अपनी आप की भी सेहत का ख्याल रखिए। अभी आपने सुना कि मतवाजन ग़िज़ा किस हद तक हमारे लिए मुफीद होती है, इसका ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके साथ ही सामिन हजरत, आइए एक और प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में सजी हुई।

सामीन, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी रोज़मर्रा की आदतों में अच्छे खान पान के साथ नशे की लत को मत शामिल कीजिए। कोई नहीं जानता कब आपके अपनों को आपके खून की ज़रूरत पड़ जाए और आप नशे की वजह कर न जाने किस तरह की बीमारी की जद में आ गए हों और आपको खुद ही खबर ना हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी को, जो रब की सबसे बड़ी नेमत है, उसे समझिए, उसे जानिए और इसकी कद्र कीजिए। उसकी दी हुई सेहतमंद जिस्म की हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये जिस्म एक बार जब बीमार हो जाता है तो आप ज़िंदगी भर की सारी दौलतें भी लुटा देते हैं तो वो वापस नहीं आती। कहते हैं कि सेहत हज़ार नहीं बल्कि आज के वक्त की बात की जाए तो वो करोड़ों की नेमत है। इसलिए इसकी कद्र करते रहिए ताकि हम और आप बीमारी में ना मुबतला हों। थोड़ी बहुत बीमार होना तो हर जगह चलता है, लेकिन कोई ऐसी मोहलिक बीमारी हो जाए जिसमें आपकी ज़िंदगी दाव पर लग जाए, ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही सामीन हजरात, आज की अंजुमन को इख्तिताम पजीर करेंगे। चलते चलते एक और प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ, आइए समात करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए धुरंधर द रिवेंज फिल्म से खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज़। गीत के बोल नुसरत फतेह अली खान के हैं और संगीत शाश्वत सचदेव का है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे, 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
8: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, नक्स अजीज और अंतरा मित्रा की आवाज में R राजकुमार फिल्म से। संगीत प्रीतम का है और गीतकार हैं मयूर पुरी।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश औजार फिल्म से अभिजीत अनु मलिक और अनामिका की आवाज में। गीत के बोल अनु मलिक ने लिखे हैं।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी की इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों के मन में एक ही सवाल कुलाचे मारने लगता है कि अब क्या करें,
0: और तभी किसी सुपर हीरो की तरह एंट्री होती है समर कैंप की।
1: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी मस्ती, सीख, हंसी, खेल, दोस्ती और ढेर सारी यादें।
0: पर आकृति, आखिर समर कैंप होता क्या है? कहीं यह गर्मी में टपा देने वाला कोई कैंप तो नहीं?
1: अरे नहीं नहीं, समर कैंप वह जगह है जहां छुट्टियां सिर्फ बीतती नहीं बल्कि खिलती भी है।
0: मतलब छुट्टियों का बगीचा।
1: बिल्कुल, यहां बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, चित्र बनाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं।
0: अरे वाह, यदि समर कैंप में एक ही टिकट पर कई मजे मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल, पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पढ़ाई जैसी सीख भी होती है, लेकिन बिना किताबों के बोझ के।
0: बिना किताबों के? यह तो जादू हुआ।
1: जादू नहीं, गतिविधियों का कमाल है। कोई बच्चा चित्रकला सीखता है, कोई नृत्य, तो कोई संगीत, तो कोई विज्ञान के मजेदार प्रयोग।
0: लेकिन सीखने से याद आया कि हमारे किलकारी में भी 31 मई से 20 जून तक अनेकों गतिविधियां सिखाई जा रही है।
1: मतलब किलकारी का चक धूम धूम समर कैंप 2026 भी पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहा है।
0: बिल्कुल, और यह कोई साधारण समर कैंप नहीं है, यह बच्चों के लिए 80 से भी अधिक गतिविधियों का शानदार खजाना मौजूद है।
1: 80 से ज्यादा? अरे भाई, यह तो गतिविधियों का पूरा मेला लग रहा है। तुम ही बताओ, यहाँ क्या क्या सीखने को मिलेगा?
0: बहुत कुछ। अगर आपको नृत्य पसंद है तो डांस सीखिए, संगीत का शौक है तो सुरों की दुनिया में खो जाइए, नाटक, चित्रकला, हस्तकला, लेखन और मूर्तिकला जैसी कलात्मक गतिविधियाँ भी सिखाई जाती है।
1: वाह, यानी जो बच्चा कलाकार बनना चाहता है उसके लिए भी मौका है, और जो वैज्ञानिक बनना चाहता है उसके लिए भी।
0: बिल्कुल, विज्ञान के रोचक प्रयोग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, फोटोग्राफी और वाद्य यंत्र सीखने जैसी गतिविधियाँ भी बच्चों की खूब पसंद बन रही है।
1: और तुम्हें पता है अनुराग, खेल कूद के शौकीनों के लिए भी खूब इंतजाम है।
0: अरे उनके लिए तो भरपूर मजा है। बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, कराटे, शतरंज, ताइक्वांडो और स्केटिंग जैसी कलाएं बच्चों को न सिर्फ फिट रखती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है।
1: यानी यहाँ दिमाग भी दौड़ता है, पैर भी दौड़ते हैं और कल्पनाएं भी उड़ान मारती हैं।
0: बिल्कुल सही। लेकिन किलकारी के समर कैंप की बात हो और फड गेम्स की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: सही कहा, क्योंकि किलकारी के फन गेम्स तो सचमुच बच्चों की मुस्कान का सबसे बड़ा कारण होते हैं।
0: और इस बार तो खीरा खाओ प्रतियोगिता, गुलगप्पा खाओ प्रतियोगिता, तरबूज खाओ प्रतियोगिता और रोमांच से भरपूर रस्सा कस्सी जैसे खेल बच्चों के उत्साह को कई गुना बढ़ा देते हैं।
1: मुझे तो गोलगप्पा खाओ प्रतियोगिता का नाम सुनकर ही भूख लग गई।
0: और तरबूज खाओ प्रतियोगिता का नाम सुनकर

0: गरीबी भी भाग जाएगी।
1: सही कहा, इन खेलों में जीत से ज्यादा मजा भाग लेने में होता है। बच्चों की हंसी, दोस्तों की शरारतें और तालियों की गूंज पूरे माहौल को जीवंत बना देती है।
0: यही तो सबर कैंप की खासियत है। यहाँ बच्चे सिर्फ नई चीजें सीखते ही नहीं बल्कि टीम वर्क, सहयोग, अनुशासन और दोस्ती जैसे जीवन के महत्वपूर्ण गुण भी सीखते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, मोबाइल और टीवी की दुनिया से निकलकर बच्चे असली दुनिया के रंगों से परिचित होते हैं।
0: बिल्कुल, जब बच्चे साथ खेलते हैं, कुछ नया बनाते हैं, मंच पर प्रस्तुति देते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तब उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। खैर, अब मूड को थोड़ा चेंज करते हैं
1: और केलकारी के समर कैंप पर एक गाना सुनते हैं।

0: वाह, क्या बात है। गाना सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा समर कैंप हमारे सामने नाच रहा हो।
1: बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा लगा कि अगर छुट्टियों का कोई राष्ट्रीय पक्षी होता तो उसका नाम समर कैंप भी होता।
0: कैसे?
1: क्योंकि जहाँ देखो वहाँ रंग बिरंगे बच्चे, नई नई गतिविधियाँ और खुशियों की चहचहाट सुनाई देती है।
0: सही कहा। और समर कैंप की एक और खासियत है, यह बच्चों को खुद को पहचानने का भी मौका देती है। मतलब कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभाएं छिपी हैं। कोई बच्चा पहली बार मंच पर कविता सुनाता है, कोई पहली बार पेंटिंग बनाता है, तो कोई पहली बार कैमरा पकड़कर शानदार तस्वीरें खींचता है।
1: यानी समर कैंप एक ऐसा आईना है जिसमें बच्चे अपनी नई नई खूबियां देख पाते हैं।
0: हाँ, और जब उनकी मेहनत की तारीफ होती है तो उनके सपनों के पंख लग जाते हैं।
1: और दोस्तों, किलकारी के चक डूब डूब समर कैंप 2026 में तो हर दिन कुछ नया देखने और सीखने को मिल रहा है।
0: और कहीं रंगों की दुनिया सज रही है, तो कहीं सुरों की महफिल जम रही है, तो कहीं बच्चों की कल्पनाएं कागज पर सुंदर चित्रों का रूप ले रही है,
1: और कहीं बच्चे विज्ञान के प्रयोगों से ऐसे ऐसे कमाल कर रहे हैं कि देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मुस्कुरा दे।
0: लेकिन सच कहूँ तो समर कैंप सिर्फ समय बिताने का नाम नहीं, बल्कि समय को यादगार बनाने का नाम है।
1: बिल्कुल, यह दोस्ती के नए अध्याय लिखे जाते हैं, आत्मविश्वास की नई सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है, और खुशियों का ऐसा संग्रह होता है जो पूरे साल साथ रहता है।
0: पर अनुराग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर छुट्टियों पर कोई कविता लिखी जाए तो उसका सबसे सुंदर शब्द होगा समर कैंप।
1: और अगर छुट्टियों की कोई तस्वीर बनाई जाए तो उसमें बच्चों की मुस्कान, रंग बिरंगे खेल और किलकारी की गूंज जरूर होगी।
0: सच कहा। पर अनुराग, जरा सोचो, समर कैंप की सुबह भी कितनी सुंदर होती है। सूरज जैसे कहता हो, उठो बच्चों, आज कुछ नया सीखना है।
1: और मैं कहता हूँ, 5 मिनट और सोने दो।
0: यही तो दिक्कत है।
1: लेकिन कैंप की सुबह अलग होती है। सबके चेहरे पर उत्साह, हाथों में पानी की बोतल और मन में ढेर सारे सपने होते हैं।
0: बिल्कुल, दिन की शुरुआत योग, व्यायाम और मजेदार गतिविधियों से होती है।
1: और फिर नींद ऐसे भागती है जैसे बिल्ली को देखकर चूहा भागता हो।
0: और कुछ बच्चों की नींद तो इतनी तेज भागती है कि वह सीधे नाश्ते की लाइन में जाकर रुकती है।
1: हाँ, क्योंकि समर

0: कैंप में सीखने के साथ साथ खाने पीने का भी उत्साह कम नहीं होता।
1: बिल्कुल, और नाश्ते के बाद शुरू होती है गतिविधियों की ऐसी रेलगाड़ी जिसमें हर डिब्बा एक नई मंजिल लेकर चलता है।
0: कहीं बच्चे रंगों से सपनों की तस्वीर बना रहे होते हैं, तो कहीं शब्दों से कहानियों का महल खड़ा कर रहे होते हैं।
1: कहीं कहीं तो ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे होते हैं कि टेस्ट ट्यूब भी सोचती होगी, वाह आज तो मैं भी स्टार बन गई।
0: सही कहा, समर कैंप में हर बच्चा किसी न किसी कला का खोजी बन जाता है।
1: और सबसे मजेदार बात यह है कि वहाँ गलती करने पर कोई डांटता नहीं, बल्कि कहता है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो,
0: क्योंकि सीखने की असली शुरुआत कोशिश से ही होती है।
1: और दोस्ती की शुरुआत भी, समर कैंप में तो ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि छुट्टियाँ खत्म होने के बाद भी यादों की घंटी बजती रहती है।
0: बिल्कुल, कोई दोस्त चित्र बनाना सिखाता है, कोई नया खेल, तो कोई हंसा हंसा कर पेट भी दर्द कर देता है।
1: और मुझे तो लगता है कि समर कैंप में दोस्ती का पौधा इतना जल्दी बढ़ता है कि एक हफ्ते में बरगद बन जाए।
0: और उसकी छाव में बैठकर बच्चे हंसी सीख और सपनों की बातें करते हैं।
1: पर अनुराग, मुझे एक बात समझ नहीं आती।
0: कौन सी?
1: समर कैंप खत्म होते ही बच्चों को अचानक छुट्टियाँ छोटी कैसे लगती है?
0: क्योंकि अच्छे दिन हमेशा जल्दी बीतते हुए लगते हैं।
1: और समर कैंप के दिन तो सचमुच सुनहरे होते हैं, हर दिन एक नई कहानी और हर शाम एक नई याद छोड़ जाती है।
0: सच कहा, शाम होते होते पूरा कैंप बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठता है। कोई दिन भर की उपलब्धियां सुनाता है, कोई अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता है, तो कोई मंच पर आकर कविता सुनाता है।
1: और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो हर कार्यक्रम में सबसे आगे दिखाई देते हैं,
0: क्योंकि समर कैंप उन्हें यह विश्वास देता है कि वे भी कुछ खास कर सकते हैं।
1: और यही विश्वास आगे चलकर बड़े सपनों की नींव बन जाता है।
0: हो सकता है आज जो बच्चा समर कैंप में चित्र बना रहा हो, वही कल बड़ा कलाकार बने। जो मंच पर कविता सुना रहा हो, वही कल प्रसिद्ध लेखक हो।
1: और जो आज विज्ञान प्रयोग कर रहा हो, वही कल कोई नई खोज करके दुनिया को चौंका दे।
0: यानी समर कैंप सिर्फ वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी सजाता है।
1: और दोस्तों, यही वजह है कि समर कैंप को बच्चों के जीवन का एक ऐसा अध्याय बन जाता है जिसे वे बड़े होकर भी मुस्कुराते हुए याद करते हैं।
0: बिल्कुल, तो इस गर्मी सिर्फ छुट्टियां मत बिताइए, उन्हें नई सीख, नई दोस्ती और नई खुशियों से भर दीजिए।
1: और अगर आप किलकारी के चक धूम धूम समर कैंप 2026 का हिस्सा हैं, तो खूब सीखिए, खूब खेलिए और खूब मुस्कुराइए।
0: पराकृति, क्या तुम्हें समर कैंप के बारे में कुछ मजेदार तथ्य पता है?
1: हाँ, बहुत सारे। क्या तुम जानते हो कि अमेरिका में 26 मिलियन से अधिक बच्चे और वयस्क समर कैंप में भाग लेते हैं?
0: यह तो बहुत बड़ी संख्या है। और क्या?
1: लगभग 55% बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम एक संगठित गतिविधि में हिस्सा लेते हैं।
0: और सबसे लोकप्रिय प्रकार का समर कैंप कौन सा है?
1: खेल शिविर सबसे लोकप्रिय प्रकार का समर कैंप है।
0: कैंप में सबसे लोकप्रिय गतिविधि क्या होती है?
1: पारंपरिक समर कैंपों में तैराकी सबसे लोकप्रिय गतिविधि होती है।
0: यानी समर कैंप में दोस्त भी बढ़ते होंगे।
1: बिल्कुल, 90% से अधिक प्रतिभागी वहाँ सार्थक दोस्ती बनाते हैं।
0: और क्या सभी देशों में समर कैंप एक जैसे होते हैं?
1: नहीं, ग्रीष्मकालीन शिविरों के अनुभव देश देश में काफी अलग होते हैं।
0: समर कैंप में जाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है?
1: इससे सामाजिक कौशल, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विकास होता है।
0: तो क्या हर रुचि के लिए कोई न कोई कैंप होता है?
1: बिल्कुल, लगभग हर शौक और रुचि के लिए कोई न कोई समर कैंप मौजूद है।
0: अब तो मेरा भी समर कैंप में जाने का मन कर रहा है।
1: और मेरा भी, वहाँ सीखने, खेलने और नए दोस्त बनाने का शानदार अवसर मिल रहा है।
0: और समर कैंप बच्चों को स्वतंत्र कैसे बनाता है?
1: घर से दूर रहकर बच्चे खुद निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं।
0: तो अब श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
1: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
1: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
0: मिलते हैं अगले रविवार,
1: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार, इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर, 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी।
0: बाल मंडली कार्यक्रम में आज आपकी साथी मायसा हैं और स्वयं सार्थक भी हैं आपके साथ, और ये लेकर आई हैं बहुत कुछ अपने नन्हे साथियों के लिए। आज हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं क्योंकि क्या शुरू हो गई है,
2: गर्मी शुरू हो गई है।
0: गर्मी तो शुरू है, स्कूल भी चलता था, लेकिन अब गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, तो आपको अपने नन्हे साथियों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। और जब स्कूल जाती है तो अच्छा लगता है, या छुट्टियाँ हो गई तब अच्छा लग रहा है?
2: स्कूल जाते हैं तो अच्छा लगता है।
0: और आपको सार्थक?
3: मुझे भी स्कूल जाने में मजा आता है।

0: अच्छा, साथी संगति में भी बहुत अच्छा लगता है। साथ रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा मन लगता है। और क्या करते हैं साथियों के साथ रहते हैं तो?
1: हम लोग अपने साथियों के साथ रहते हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में गाना गा सकते हैं।
0: और खेल सकते हैं। आप
1: हाँ,
0: क्या करते हैं?
2: मैं साथियों के साथ खेलता हूँ, पढ़ता हूँ और होमवर्क करता हूँ।
0: होमवर्क करते हैं। और लड़ाई झगड़े भी तो होते होंगे दोस्तों के साथ।
2: जी दीदी,
0: हाँ, तो फिर कौन सुलह कराता है? स्कूल में तो टीचर होती हैं, या आपसे जो सीनियर भैया दीदी होते हैं वो लोग होते हैं। लोगों को उनके पास जाना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बात पर नोक झोंक हो जाती है, तो फिर जब दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी होती है।
1: हाँ दी,
0: वो घर में भी ऐसा होता है, स्कूल में भी। और बच्चों, आपको पता है ग्रुप स्टडी किसको कहते हैं?
1: नहीं दीदी।
0: ग्रुप स्टडी यानी ग्रुप, जब कई लोग मिलते हैं। जैसे स्कूल में अगर आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपके और दोस्त जो आपके क्लास के हैं उन सब के साथ बैठेंगे। कोई कोई सवाल या कुछ ऐसा विषय होता है, सब्जेक्ट होता है जो अकेले समझ में नहीं आता है। ग्रुप स्टडी अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे तो हो सकता है वो किसी को बहुत अच्छे से आता हो तो सबके बीच में बता दे।
2: जी दीदी,
1: जी दीदी,
0: और आपको कुछ आता हो ऐसा जो और आपके साथी को बहुत अच्छे से समझ ना आ रहा हो तो वो भी आप बता सकती हैं।
2: जी दीदी,
1: हाँ दीदी,
0: हाँ बच्चों, आपको पता है हमारे शरीर में जो रक्त है, हृदय में ही रक्त शुद्ध भी होता है। और हृदय में दो नली होती है, एक में अशुद्ध रक्त आता है और हृदय उसको शुद्ध करता है, और फिर दूसरी नली से वो जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे पूरे शरीर में फैलता है। और यह क्रिया जो है हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लगातार चलता रहता है। हम लोग चाहे सोते रहें, जागते रहें, बैठे रहें, दौड़ते रहें, ये क्रिया हमेशा चलती ही रहती है।
1: हाँ
0: और
1: दीदी,
0: जब हमारा खान पान अच्छा होगा, हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे तो हमारे अंदर खून अच्छा बनेगा, और ये क्रिया निरंतर शरीर के अंदर चलती रहती है। तो कभी कभी बहुत कमजोरी महसूस होती है या और भी कोई परेशानी होती है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी जांच करते हैं, जांच होती है तो पता चलता है खून की कमी हो रही है। ऐसा सुनने में आता होगा।
1: हाँ
0: जी
1: दीदी,
0: दीदी, ऐसे में क्या किया जाता है? पहले तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं, या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं यही बताते हैं, खूब अच्छे से भोजन करो, साफ सफाई रखो, फल सब्जियां खूब अच्छे से खाओ। जो भी भोजन मिले, जो भी फल मिले, सबको बहुत अच्छे से खाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो फल सब्जियां अनाज दिए हैं वो सब हमारे खाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए होता है। आपको क्या पसंद है मायशा फलों में?
1: मुझे आम पसंद है।
0: तो आम का मौसम तो आ गया, अब आप खूब आम खाएंगी
1: हाँ
0: और सेहत
1: दीदी,
0: बनाएंगी। लेकिन आम खाएंगी तो उतना ही मेहनत भी करिए। और आपको सार्थक क्या पसंद है फलों
2: मुझे
0: में?
2: तरबूज पसंद है।
0: ये दोनों ही मौसमी फल हैं, तो अभी तो आप बहुत खुश होंगे। खाते हैं रोज
2: जी
0: तरबूज,
2: दीदी,
0: विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत को अच्छा बनाते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे थे अब शरीर में खून की कमी। तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं आराम करने, और कभी कभी खून चढ़ाना भी पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है उनको खून चढ़ाना पड़ता है। कहाँ से हम ले सकते हैं?
2: ये खून हम लोग के भोजन से आता है।
0: भोजन से आता है हमारे अंदर। जब कमी हो गई, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा इनको खून

0: खून की आवश्यकता है, इनको खून चढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे परिचित होते हैं या हॉस्पिटल होता है वहां से हमको खून लेना पड़ता है। वो हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं परिवार में परिचित में वो रक्त दान करते हैं, और उसी रक्त को जब जो बीमार व्यक्ति है उसके रक्त से उसका मिलान किया जाता है, जब वो ग्रुप मिलता है तो फिर उसको रक्त चढ़ाया जाता है। तो इस तरह जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप नहीं, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, जो वयस्क व्यक्ति हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है बच्चों जो रक्तदान करते हैं उनके अंदर कोई कमजोरी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और उनके अंदर फिर से रक्त अच्छा बनता है, उनको दुगनी तंदुरुस्ती मिलती है जो लोग रक्तदान करते हैं। इसलिए एक ये अच्छा काम है। आपने सुना है रक्तदान के विषय में?
1: हाँ दीदी।
0: दान किया धन घटे नहीं बढ़ता जाए मान, सबसे बड़ा है जगत में रक्तदान रक्तदान। मायशा अपने नन्हे साथियों के लिए तोहफे के रूप में क्या लाई हैं?
1: मैं अपने तोहफे के रूप में रानी लक्ष्मीबाई की कविता लाई हूँ। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और सब उन्हें मनु कहते थे। वे घोड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने झांसी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में वीरता से युद्ध किया। 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई।
0: उनके लिए कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो युद्ध के मैदान में जब गई तो बिल्कुल वीरता से, बहुत छोटी सेना उनकी थी, लेकिन अपने सेना को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था कि वो अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़ती रही।
1: जी दीदी।
0: कोई कविता भी सुनाएंगी?
1: हाँ दीदी।
0: सुनाइए।
1: समय से सूरज सदा समय से आता और समय से जाता। चंदा सदा समय से आता और समय से जाता। बारिश सदा समय से आता और समय से जाता। तारे सदा समय से आते और सदा समय से जाते। गर्मी सदा समय से आती और समय से जाती। ठंडा सदा समय से आता और समय से जाती।
0: धन्यवाद तो आपके नन्हे साथी देंगे कि मायशा अपने साथियों के लिए ये एक तोहफा लेकर आई। और सही है बच्चों, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। यदि गर्मी नहीं पड़ेगी तो आम, लीची, जामुन, तरबूज, खरबूज ये सब हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सीजनल फल होते हैं।
1: जी दीदी।
0: यदि हम जाड़ा में चाहें आम खा ले तो खा पाएंगे?
1: नहीं
0: नहीं,
1: दीदी।
0: मिलेगा ही नहीं। और इसीलिए हर मौसम का आनंद लेना चाहिए।
1: जी
0: तो
1: दीदी।
0: गर्मी का आनंद हम कैसे लेते हैं? आप लोग कैसे ले रहे हैं अभी गर्मी का आनंद?
2: हम लोग गर्मी का आनंद फल, बहुत सारे फल खा के, आइसक्रीम्स खा के और भी बहुत सारे ठंडे ठंडे चीज खा के ले रहे हैं।
0: हाँ, ये तो खाने से आनंद मिला। और क्या-क्या मस्ती करते हैं गर्मी की छुट्टी जो हुई है उसमें?
2: हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अलग अलग जगह घूमने जाते हैं।
0: अच्छा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूरी है सार्थक कि आप कहीं भी जा रहे हैं उस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लीजिए। और जब कहीं घूमने जाने का प्लान हो रहा हो और घर में तैयारी चल रही हो, पैकिंग वगैरह हो रही हो, उसमें अपने घर वालों की मदद भी करनी चाहिए। सबसे पहले तो कहीं भी जाना है उसके लिए एक लिस्ट बनाना चाहिए कि हमारा जरूरी सामान कुछ रह ना जाए, और फिर जब हम वहां पहुंचे तो याद आए कि ये तो हमारे पास घर में पड़ा था, हम ले आते, अब यहाँ तो खरीदना पड़ेगा। इसीलिए जब लिस्ट बनाएंगे तो आपके दिमाग में कोई भी सामान आए उसको लिखते जाइए, तो फिर जब पैकिंग करनी हो उस समय आसानी भी होती है।
1: जी जी
0: और सार्थक भी अपने साथियों के लिए लेकर आए हैं जो कह रहे हैं मुझे भी मौका मिले।
2: मेरे पास कोयल कविता। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतला।

0: ना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे सुनाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल क्या मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है, माने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोले यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती सब चिड़ियों की रानी।
1: ये झूम झूम कर सार्थक अपने साथियों को कोयल की बात बता रहे थे। और बच्चों, आज हम आपके लिए एक चुटकुला सुना दें,
0: हाँ दीदी,
1: तो सुनिए। टीचर कहती हैं, सबसे समझदार कौन है? तो बच्चा कहता है, दादी। टीचर बोलती, क्यों? बच्चा कहता है, क्योंकि दादी मेरी सारी गलतियों को माफ कर देती है, इसीलिए वो समझदार तो है ही, और हम लोग को भी समझदार बनाने की कोशिश करती हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। और उनकी कहानियाँ, किस्से जो होते हैं नानी दादी के, उसमें भी कुछ न कुछ संदेश और अच्छी बात सीखने को मिलती है। एक और साथी हैं शुभम, अपने नन्हे साथियों से मिलने आए हैं और ये भी कुछ लेकर आए हैं। क्या लाए हैं शुभम?
2: जी दीदी, कविता। मेरी कविता का नाम जीवन की शिक्षा है। जीवन पथ पर जो भी भटके, जीवन पथ पर जो भी भटके, राह नहीं वो खुद ही लटके। हौसलों की उड़ान भरो, तुम आगे बढ़कर काम करो। मुश्किलों का शोर है, मंजिल अभी कुछ दूर है। हारना तुमको नहीं स्वीकार, खुद पर रखो बस एतबार। गिरते हैं जो वहीं संभलते हैं, गिरते हैं जो वहीं संभलते हैं। तूफानों में ही तो दीपक जलते हैं, तूफानों में ही तो दीपक जलते हैं। डगर कठिन हो राह हो अंधियारी, डगर कठिन हो राह हो अंधियारी। जीत की ये पहली तैयारी, जीत की ये पहली तैयारी।
1: इतनी अच्छी कविता शुभम ने अपने साथियों को सुनाई और इससे बहुत प्रेरणा भी मिली। और सीखते हम यही है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, जब आप सब एक साथ होते हैं, गेम खेलते हैं, तो कोई कहता है भो, तो डर जाते हैं।
2: यस हाँ जी जी दीदी
1: अभी भी डर गए क्या?
0: हाँ दीदी
1: हाँ, तो ये तो स्वाभाविक है कि जब कोई, हम बिल्कुल शांत माहौल है और वहाँ कोई अगर इस तरह से बोलता है तो डर तो लग ही जाता है, लेकिन अगले पल हम अपने आसपास देख के समझ जाते हैं सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। आपको किस चीज़ से डर लगता है?
0: मुझे सांप से डर लगता है।
1: अच्छा, ये तो डरना भी चाहिए। और आपको शुभम?
2: शेर से
1: शेर से। चिड़िया खाना जाते हैं या कहीं जंगल सफारी वगैरह के लिए जाते हैं तो बहुत सुरक्षित तरीके से हम लोग जानवरों को देखते हैं, वो भी हमसे डरते हैं। अगर हम उनको नहीं छेड़े, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, कोई भी जानवर हो, कोई पशु पक्षी हो, हम उनको अगर तंग नहीं करते हैं तो हमको हानि नहीं पहुंचाते। जब उनको डर होता है कि ये हमको परेशान कर रहे हैं, हमको हानि पहुंचाएंगे, तभी वो अपने बचाव में हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन सिर्फ जानवरों से डर थोड़े ही लगता है, किसी को पढ़ाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी ज़्यादा हो वहाँ डर से डर लगता है, किसी को आग से, बिजली से डर लगता है।
0: जी दीदी
1: तो ऐसी चीजों से डरना जरूरी भी है। बच्चों, आपको परीक्षा से भी डर लगता है?
0: जी दीदी थोड़ा थोड़ा
1: विद्या को भी परीक्षा से थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और ये डर पूरी तरह कब खत्म होगा विद्या?
0: जब एग्जाम अच्छा दे के आएंगे तो।
1: हाँ बिल्कुल, अच्छी बात बताई नन्हे साथियों को कि जब हमारी तैयारी अच्छी होती है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है।
0: जी दीदी
1: और अपने जो बड़े भाई बहन हैं या हमारे मम्मी पापा या घर में जो बड़े हैं, उनसे थोड़ा तो डरना चाहिए।
0: जी दीदी जी
1: डरना
0: दीदी
1: चाहिए। आप डरते हैं?
0: हाँ दीदी
1: कब डर लगता है अपने भैया से, दीदी से, या घर में जो बड़े हैं उनके सामने?
0: कुछ गलतियां कर दे तो।
1: पता चल जाता आपको कि गलती हो गई, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और आप डरने लगते हैं। गलती हो जाती है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो गलती हुई है उसकी माफ़ी मिल जाए तो हमारा डर खत्म हो जाता है।
0: जी दीदी,
1: जो हमारे शरीर के शत्रु हैं, जैसे यदि हम बीमार

0: पड़े, उससे हमको परेशानी होगी, तो बीमारी से डरना चाहिए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बीमारी से डर कर आप क्या करेंगी?
1: हम अच्छे से खाना खाएंगे, आराम करेंगे और डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाएंगे।
0: हाँ, और जब अच्छे से खाना खाएंगे तो हम जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और खाने में कि ये सब्जी अच्छी नहीं है, वो सब्जी अच्छी नहीं है, हाँ कुछ कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती है, लेकिन उसको भी खाना चाहिए ताकि धीरे धीरे हमारी आदत बने,
1: जी
0: स्वाद हम जान पाएं। जी
1: जी
0: दीदी,
1: दीदी
0: करेला कैसा होता है?
1: कड़वा कड़वा
0: तो इसका मतलब आपने करेला खाया है, तभी तो जाना कि करेला कड़वा होता है।
1: जी दीदी
0: हाँ,
1: जी दीदी
0: लेकिन कड़वा तो होता है, लेकिन उसके फायदे बहुत होते हैं। चाहे नीम है, करेला है, नींबू कैसा होता है?
1: खट्टा
0: खट्टा खट्टा होता है। तो जब आपने खाया है तभी तो जान रहे हैं कि उसका स्वाद खट्टा होता है।
1: जी
0: तो
1: दीदी
0: इसलिए हर हर भोजन का स्वाद जरूर चखना चाहिए। और विद्या भी अपने पेपर पर नजर डाल रही है और इशारा कर रही है, दीदी हमारे पास भी अपने नन्हे साथियों के लिए है कुछ कुछ। क्या है विद्या आपके पास?
1: आज मैं अपने नन्हे साथियों को एक प्रार्थना सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि जब भी हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। भगवान ने हमें बनाया है, हमें बहुत कुछ दिया है, तो क्यों ना आज हम भगवान के लिए एक प्रार्थना गा दें। तो भगवान, मेरा जीवन संसार के लिए हो या जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन पलट दे, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को ना भूले, चाहे हमारी नया मझधार के लिए हो। वाणी शरीर मन से संसार का भला हो, चाहे हमारा यह तन तलवार के लिए हो। यह शरीर तेरा मंदिर और आत्मा है मूरत, हर काम आत्मा के श्रृंगार के लिए हो। हर एक जीव में हम तेरा ही रूप देखे, बस कामना पतित के उद्धार के लिए हो। भगवान, मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो।
0: एकदम शांत मन से, शुद्ध शरीर से बैठकर प्रार्थना करते हैं हम। एकांत में, अकेले में बैठकर, या कहीं भी जहाँ भी मौका मिले बैठकर थोड़ी देर अपने मन को शांत करके प्रार्थना करनी चाहिए।
1: जी दीदी
0: इससे हमको
1: जी दीदी
0: मानसिक शांति भी मिलती है, और जब हम कोई काम करने चलते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि हमने पहले उनसे प्रार्थना कर ली है।
1: जी
0: जी दीदी,
1: दीदी
0: बहुत सारे बच्चे होते हैं और शायद आप लोग भी ऐसा करते होंगे, और हम भी, रंजना दीदी भी बचपन में, लेकिन एग्जाम के समय हम लोग जरूर भगवान जी से कहते थे, भगवान जी हमारी परीक्षा अच्छी जाए, और प्रणाम करते थे, पूजा करते थे। लेकिन यदि हमारी तैयारी अच्छी होगी तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, हमको सफलता मिलेगी।
1: जी दीदी मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ।
0: सुनाइए।

0: बच्चा तो बहुत अच्छा है, सारे काम समय पर अच्छे से कर लेता है, ऐसा होता है?
1: जी
0: जी दीदी,
1: दीदी,
0: आप लोग अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं?
1: जी
0: जी दीदी,
1: दीदी,
0: अब छुट्टियां हो गई तो भी कोई रूटीन है क्या?
1: हाँ, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम लोग अपने मम्मी पापा को मदद कर
0: और
1: सकें।
0: चाहिए नहीं, ये करना होगा। बच्चों, आज हमारे कार्यक्रम में, बाल मंडली में बच्चों का उत्सव है, जैसे बहुत सारे बच्चे आए हैं अपने नन्हे साथियों से मिलने, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां जो शुरू हो गई हैं, तो इनको भी लगा कि स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों से मिलने का मौका कभी-कभी मिलता है, लेकिन गर्मी छुट्टी है तो जरूरी हम मिल सकते हैं अपने नन्हे साथियों से। तो एक और आपकी साथी आई है, उत्सवी, वो भी आपके लिए कुछ लेकर आई है। क्या है उत्सवी आपके पास?
1: कविता। तो आज मैं चेतक की वीरता कविता पाठ करने जा रही हूँ, जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था। गिरता न कभी चेतक रण पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवारी उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीग गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा वह, यहाँ नहीं, वह वही रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल व्रज में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग।
0: बहुत बहुत अच्छी कविता उत्सवी ने सुनाई। आप सबके प्यारे कार्यक्रम बाल मंडली को सुन रहे हैं, उनको हम बताएं कि उत्सवी ने ये जो कविता सुनाई चेतक की, वो बिल्कुल झूम झूम के दोनों हाथों से भाव दे दे कर मुस्कुराते हुए आपको ये कविता सुनाई। तो ऐसे ही जब हम पसंद की कुछ चीज, अपने पसंद का कोई काम या कुछ पढ़ाई या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारे चेहरे पर वो भाव दिखता है। तो इसलिए हमेशा अपने आपको क्या रखना चाहिए,
1: खुश।
0: बिल्कुल अच्छी बात। और आप भी खुश रहती हैं?
1: हाँ दीदी,
0: कभी-कभी गुस्सा भी आता है,
1: कभी कभी।
0: आना भी चाहिए। तो गुस्से को बहुत लंबा नहीं चलने देना चाहिए उत्सवी, है ना? एक पहेली बुझाएं।
1: जी
0: बिना पैरों के दौड़ लगाऊं, बिना पंख उड़ता जाऊं, मुझे पकड़ ना पाए कोई, बताओ मैं हूं कौन?
1: समय।
0: समय। थोड़ा सा और इधर उधर, थोड़ा सा और। माशा नहीं समझ पा रही, चलिए हम ही बता देते हैं। हवा, जिसके हाथ पांव नहीं होते हैं लेकिन इधर उधर वो चलती है और हमको उसका एहसास होता है, हवा को हम देख नहीं पाते हैं। बच्चों, आप मौसम के चक्र को जानते हैं?
1: जी
0: क्या
1: जी
0: जानते हैं?
1: हमारा
0: है ना?
1: मौसम समय समय से बदलता रहता है, और हमें मौसम के अनुरूप ही अपने आप को भी ढालना पड़ता है।
0: हाँ, जैसे मौसम का चक्र होता है कि जब हवा चलती है तो वो गर्मी में वही हवा हमको गर्म लगती है, और ठंडी में ही वही हवा चलती है तो हमको ठंडक लगती है, और बारिश जब होती है और हवा तेज चलती है तो बारिश की बूंदें हमको फुहार और झरने की तरह पड़ती है। तो हवा का रूप बदलता रहता है, इसी तरह साल भर में मौसम भी बदलता रहता है, और यही मौसम का चक्र भी कहलाता है। खास तौर पर गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत, हर मौसम की अपनी खासियत होती है बच्चों, होती है ना?
1: जी।
0: तो हर मौसम का आनंद लेना चाहिए, और अपने बाल मंडली का भी आनंद आप लोग लेते रहिए। और रंजना दीदी बच्चों के साथ फिर अगले कार्यक्रम में आपके साथ मिलेंगी, और बच्चों से आपके लिए बहुत सारे तोहफे रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगी। तोहफे क्या होंगे? उनकी बातें, उनके अनुभव, उनकी कविताएं, पहेलियां, चुटकुले, और जो भी वो लेकर आएंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो हम अपने नन्हे साथियों से विदा ले। बच्चों, जय हिंद।

विद्या ने अपने नन्हे साथियों को इतना अच्छा भजन भी सुनाया और प्रार्थना भी सुनाई। तो अपने जीवन में इस तरह से हम कुछ बातों का ख्याल रखें और अपने नित्य क्रिया को अच्छी रखें तो हम जीवन में सफल भी होंगे, हमको खुशी भी मिलेगी और हमारे घर के जो बड़े लोग हैं वो खुश भी होंगे कि ये

अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। मैं आपका रेडियो दोस्त आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते सर
2: जी, कौन कहाँ से?
3: जय हिंद चंदुआ, नवी नगर से धीरेन्द्र सिंह
2: जी। स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
2: जी बढ़िया, बहुत अच्छे। और हालचाल बताइए अपने तरफ का।
3: ठीक है सर, थोड़ा गर्मी से परेशानी है।
2: गर्मी से परेशानी तो होगी ही, उसका तो कोई उपाय है नहीं अपने हाथ में, बस बच के रहना, सावधानी बरतना, यही कर सकते हैं हम लोग।
3: जी हाँ सर
2: जी, तो सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, बचकर रहिए, अत्यधिक गर्मी से परेशानी तो होगी ही। और क्या हो रहा है?
3: खेती बाड़ी की तैयारी चल रहा है, बिहान डलाएगा।
2: तो बारिश की प्रतीक्षा में है अभी आप?
3: जी हाँ, बारिश की प्रतीक्षा में है। मानसून की बारिश होगा, खेती के काम शुरू हो जाएगा।
2: ठीक है, बताइए क्या सुनवाया जाए।
3: फिल्म का नाम है मैंने जीना सीख लिया। गाने का बोल है चेहरा कमल है आपका।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार नमस्कार, मोहम्मद उस्मान बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर से सर।
0: कैसे हैं आप?
1: बस दुआएं हैं आप लोगों की, ठीक ठाक हूँ। आप
0: जी
1: लोग भी खैरियत से हैं?
0: बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है।
1: अच्छा चलिए जी, सब हाल चाल तो ठीक ठाक है
0: जी।
1: अभी है, थोड़ा सा गर्म में हैं हम लोग पड़े हुए जी।
0: कैसे रह रहे हैं
1: चारों
0: गर्मी
1: तरफ
0: में, मतलब क्या करते हैं?
1: गर्मी में क्या रहा जाए, खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है अभी। शरबत का थोड़ा इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, नींबू पानी का, सत्तू और आम का जूस भी, अभी मार्केट में तो आम भी निकल गया है, वही सबका पीने का थोड़ा हिसाब किताब लग रहा है। हम लोग पी रहे हैं, दाना कम खा रहे हैं, पीने का जो सामान है ज्यादा लिक्विड टाइप का वो सब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: हाँ, ताकि शरीर में तरलता बनी रहे।
1: जी जी
0: जी, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। और कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ, कार्यक्रम सुने ना, अभी तो लोकगीत सुने। समाचार में भोजपुरी में आप लोग प्रसारित किए हैं उसके लिए धन्यवाद, वो भी बहुत
0: जी
1: अच्छा है, उसको
0: जी
1: भी सुनते हैं।
0: अभी क्या सुनेंगे आप?
1: अभी सुना दीजिए काला पत्थर का वो गाना, बाहों में तेरी खुशबू की ढेर है, सांसों में तेरी मस्ती की ढेर है।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बोल रहे हैं जय नेत्रहीन विद्यालय से बोल रहे हैं। मैं दृष्टिहीन हूँ, जय नेत्रहीन विद्यालय रहीन बिखा गया जी जिला में। मैं सिकंदर कुमार बोल रहा हूँ सर, जो पिछले बार बात किए थे।
0: अच्छा
1: नौवीं
0: अच्छा
1: कक्षा में पढ़ते हैं सर।
0: जी जी स्वागत है। कैसे हैं सिकंदर जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर।
0: क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा है आपका?
1: हाँ सर, ठीक चल रहा है। आप कैसे हैं सर?
0: बहुत अच्छे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
1: जी सर।
0: और विद्यालय की कुछ खास गतिविधियां अगर कुछ हैं तो बताइए।
1: जी सर, अभी तो गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं सर।
0: तो आप लोग घर पर हैं अभी?
1: जी घर पर हैं
0: अच्छा, घर अभी आपका आसपास है?
1: जी, आसपास बेला साकिर भी गए सर।
0: तो घर पर रहकर क्या कर रहे हैं?
1: घर पर रहकर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं सर।
0: अभी आपने फोन किया है, क्या सुनिएगा?
1: आदमी खिलौना है सर, अलका यादव कुमार सोनू का। फिल्म का नाम तो याद नहीं है सर।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी नमस्कार सर। हेलो फरमाइश सर।
0: जी। हेलो फरमाइश में फोन किया आपने, स्वागत है आपका। कौन कहाँ से बोल रहे
1: कुमार
0: हैं
1: बेतिया से करण कुमार बात कर रहा हूँ।
0: जी? क्या हाल चाल है करण जी?
1: हमारा भी बढ़िया है, बैठे हैं अभी। मोबाइल पे रेडियो पहले सुनते थे, अब लाइट से हो गया है, बाजा वाला लाइट वाला रेडियो। रेडियो पे सुनेंगे अब कार्यक्रम आपका।
0: नया रेडियो
1: जी तो
0: सेट लिया है?
1: सर, और रेडियो सेट बढ़िया दे दिए खरीद कर। सुन रहे थे कि रेडियो सुन रहा था मोबाइल पे, संतोषी माता का गाना है, फिल्म का नाम नहीं जानते हैं। गाना है जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: हेलो।
0: जी।
1: हाँ
0: नमस्कार।
1: सर नमस्ते। बड़वा से खरगोन से बोल रही हूँ, बड़वा खरगोन एमपी से। सर
0: जी
1: नम्रता पांडे, बेटे
0: बहुत बहुत स्वागत मैडम,
1: की शादी है 19 तारीख को।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को। शादी ब्याह का माहौल बहुत खुशी का बना रहे, आगे
1: जी
0: भी
1: सर।
0: सब कुछ अच्छा रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। तैयारी
1: हाँ
0: तो लगभग लगभग हो चुकी होगी आपकी।
1: हाँ अभी चल रही है सर, अभी भी।
0: अच्छा
1: हाँ सर, बेटे से मतलब 4 लाइन मैंने लिखी थी, वो सुनाना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए खुशियों की किरण हो, मेरे जीवन की धड़कन हो, तुझसे ही मेरी पहचान है, तू ही मेरी ताकत है। तुझे हर कदम पर सफलता ही मिले, तेरे हर सपनों को पूर्णता ही मिले। जी
0: बहुत अच्छा, बहुत
1: जी
0: सारी शुभकामनाएं हैं आपके
1: सर।
0: इस भाव में, और मंगल
1: हाँ
0: कामनाएं हैं। बहुत अच्छा है, ये हर पेरेंट को अपने बच्चों के लिए होना चाहिए, होता भी है, और आशीर्वाद हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहता है।
1: जी जी
0: चलिए सब अच्छे से निपटाइए, बढ़िया है।
1: जी जी सर। ओ मेरी आंखों के पहले सपने, ये सुनना चाहते हैं सर।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार नमस्कार संजय बाबू, विभूतिपुर के पटेलिया ग्राम से बोल रहे हैं, जगदीश साहब।
0: जी जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं?
1: गांव में रहने लगे हैं, पहले बाहर में रहते थे कलकत्ता में, यही खेती गृहस्थी होता है और बाकी टाइम में यही गाना सुनते रहते हैं। ये तो कल थोड़ा वर्षा हुआ था ना, इसीलिए थोड़ा ठंडा आज में है, नहीं तो गर्मी इतना पड़ रहा है कि गर्मी से परेशान है।
0: जी चारों तरफ गर्मी है, बच के रहिए, स्वस्थ रहिए। क्या सुनेंगे बताइए।
1: हम हो गए परदेशी।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: और कहिए।
1: बढ़िया है भैया, बस मानसून का इंतजार है।
0: हम सभी को मानसून का इंतजार है, गर्मी से कुछ राहत मिले, लेकिन अभी लगता समय है।
1: जी, 1-8 हफ्ता अभी समय है भैया।
0: तो 1 सप्ताह 10 दिन का समय जो है थोड़ा कठिन है। कोई बात नहीं, इतना समय बीता ये भी बीतेगा। ठीक से सावधानी बरतते रहें। और क्या कर रहे हैं?
1: अभी घर ही में है भैया, आराम कर रहे हैं।
0: जी, चलिए तो आराम से फिर बताइए क्या सुनेंगे आप।
1: फिल्म है सच्चा झूठा और गीत के बोल है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: सर नमस्कार, मुजफ्फरपुर से राजू कुमार बोल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत आपका राजू जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं सर, और आप कैसे हैं?
1: ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
0: काफी गर्मी तो भी हो रही है, कई बादल छा रहे हैं, तो वर्षा होने के बाद थोड़ा सा मौसम जो है बदल जा रहा है, तो इस
1: हाँ,
0: पर
1: कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है, तो उससे
0: जी
1: मौसम
0: हाँ ऐसे
1: में बदलाव दिखा है।
0: जी सर, ऐसे न्यूज से पता चला है सर कि आजकल में मौसम का बदलाव होने वाला है सर, तो इसमें भी मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अपनी जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान दें,
1: बिल्कुल
0: और इधर सर ये शुक्रिया करना चाहें कि आज जो 11 बजे जो है बिहार का जो धरोहर है गौतम बुद्ध पर जो आपका जो सर कार्यक्रम था, जी, तो उस पर मैं सुना सर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको बहुत सर धन्यवाद कि आपने सर भागलपुर का जो विक्रमशिला है, नालंदा का विश्वविद्यालय है, जो भी हमारे बिहार का जो गौरव है उस पर प्रकाश डाले सर।
1: धन्यवाद, आपने सुना, पसंद किया, फीडबैक दिया, बहुत अच्छा जी।
0: और नहीं इधर विशेष बात और भी है कि इधर आज का जो चिंतन है, इधर लगातार विजय कुमार सिन्हा मंटू जी थे तो उनकी आवाज में सुनने को मिल रही है, तो कुछ यादें जो है ताजा हो रही है, और इधर सुधा जी के भी आवाज में चिंतन सुनने को मिला, उनकी भी आवाज भी अच्छी लगी, और जो उनका गंभीर विषय था चिंतन पर सोचने को मजबूर कर दिया कि नहीं समाज में जो बदलाव है उस पर जो है, लेकिन खैर तब कोई करे तब तो बदलाव हो सकता है, एक इंसान से तो थोड़ी हो सकता है, तो
1: लेकिन चलिए,
0: सभी सर कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और अब गाना बता दीजिए।
0: जी सर, फिल्म का नाम नगीना,
1: गाना
0: उसका सर जी हाँ उसका कोई भी सर गाना चला दीजिए, क्योंकि मोहम्मद अजीज का आवाज सर बहुत बढ़िया आवाज है, उनकी आवाज
1: चलिए
0: में सभी सर गाने अच्छे लगते हैं।
1: सुनवाते हैं, आजकल कुछ याद रहता नहीं।
0: बिल्कुल सर, जब पकड़ लिए सर हमारी पसंद का।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: नमस्कार सर
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, बोल रहे हैं जमुई जिला से।
0: क्या शुभ नाम हुआ?
1: नाम मेरा महराज भुइयां हुआ।
0: पहली बार कॉल किया आपने?
1: कॉल तो बहुत बार किया सर, लेकिन लगवे नहीं करता है। एक बार लगाता है, उठ भी नहीं किया है। लेकिन हम डेली फोन लगाते हैं, रविवार को, बुधवार को, बुधवार को।
0: चलिए, आज लग गया फोन। बताइए अपने बारे में।
1: अपने बारे में सर, हम रिटेलमेंट हूँ बंगाल कोल फील्ड से। तो अब घर पर आकर बैठा हूँ।
0: घर पर रह के कुछ करते हैं या ऐसे ही बस?
1: हाँ करते हैं, लड़का लोग है तो लोग अपना ड्यूटी चला जाते हैं। हम घर पर जो मजदूरा लोग है उन लोग को काम बताते हैं।

0: हाँ
1: खेती बाड़ी वाला।
0: खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है, सब मजदूरी से करवाते हैं।
1: क्या क्या करवा लेते हैं खेत में?
0: मैं अभी देखिए बीज रोपने का टाइम आ गया है, उसके बाद पूरा रोहन ने छत्तर निकलना ही बोला कि निकल गया है, उसके बाद मृगशिरा ले गए, मृगशिरा के बाद हम लोग अदरा में मोरी गिराते हैं, उसके बाद पूरा वर्षा हो जाएगा, बीज तैयार हो जाएगा, तब सावन होते होते कुछ भादो जाते हैं, उसके बाद रोपा हो जाता है। हाँ
1: अभी तो बहुत समय है इसका मतलब। चलिए, रेडियो में क्या क्या सुनते हैं?
0: रेडियो सर देखिए सवेरे कृषि विभाग के सुनते हैं, उसके बाद कृषि विभाग सुन करके समाचार सुनते हैं, समाचार सुन करके भक्ति गाना देता है, सुबह में 5-6 ठो वो सुनते हैं, समाचार तो 6 बजे सुनते हैं, फिर टाइम टाइम पर 7 बजे है, 8 बजे है, 8:45 में एक समाचार है, और उसके बाद रविवार को 11 बजे से सुनते हैं, फिर लोकगीत देते हैं, तो लोकगीत रातें देखिए मंगलवार को देते हैं गुंजे बिहार 10 बजे, हाँ बुधवार को देते हैं खेल परिक्रमा को, जितना जो आदमी को हम देखा नहीं नाम नहीं सुना है उन लोग को आप लोग नाम बताते हैं, एक मैडम एक आप, हाँ
1: जी।
0: जो मेरे को हर खिलाड़ी को विभाग को खिलाड़ी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, पहलवानी हो।
1: चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सुनते रहिए।
0: कोई
1: और अब बताइए, गाना क्या सुनेंगे?
0: गाना सर तो है, हमारा शौक है कि कोई भक्तिये में दे दीजिएगा।

0: आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1 बजे से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 0612-222-2550। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 0612-222-2550। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोक।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए

0: आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे कविता चौधरी और अवधेश कुमार।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपक राम की शक्ति पूजा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम

0: चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेर संवरण शील नील नभगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह, विच्छुरित वहनिरा जीव नयन, हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गीरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुप्रहर, जानकी भीरूर आशाभर रावण संवर, लौटे युगतल राक्षस पदतल पृथ्वी तल मल, विध बहुल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लत धनुगुण है कटिबंध स्रस्त तुम नीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपरिजस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतराजू दुर्गम पर्वत पर निशांतकार, चमकती दूर ताराएं ज्यो हो कहीं पार, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जांबवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए करपद क्षालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, है अमानिशा उगलता गगन घने अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे यम्बुधि विशाल, भूदरज ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार

0: हार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे ही क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुई किसलय झरते पराग समुदय, गाते खगन जीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी, सिहरातन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार, ज्यो उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यो देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़ का सुबाह विराध शिरस्त्रय दूषण खर, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए द्रिगों में सीता के राममय नयन, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तातल, बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य, साधना मध्यवी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर कदगद, पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े यस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल, बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वसित पवन उनचास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, शत घूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिफल समर्थ बढ़ता समक्ष, शत वायु वेग बल डुबा तल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहा, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा की पदतल भार धरण हर मंत्र स्वर बोले,
1: संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भाव धर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध,
0: कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता

0: तूने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक केवल, ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह। ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सह सह, ये महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को जल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो ये राघव के लिए धार्य?
1: कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। राम का विषण्णानन देखते हुए कुछ क्षण,
2: हे सखा,
1: विभीषण बोले,
2: आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत शम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रानंदन मेघनाथ जित रण, है वही भल्लपति वानरेन्द्र सुग्रीव प्रमण, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय या भाव प्रहर? रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जयरण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलमश गदाचार, जिसने हित कहते किया मुझे पादब प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से गिर, सुनता वसंत में उपवन में कर पूजित पिक, मैं बना किंतु लंका पति धिक राघव धिक धिक।
1: सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे नहीं नहीं कुछ चाव न हो कोई दुराव, ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि,
3: मित्रवर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति।
1: कहते छल छल हो गई नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके त्रिगजन, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपिगह युगपद मसक दंड, स्थिर जांबवान समझते हुए सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले,
3: आया न समझ में ये देवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर, करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, हो शक्ति जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, जिनमें निहित है पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांक्षण को ले जैसे शशांक नव में अशंक, हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर शिप्र वार पर वार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहनी वामा के त्रिग त्यों त्यों।

0: पश्चात पश्चात देखने लगी मुझे, बंध गए हस्त फिर खिंचा न धनु, मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त।
1: कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान,
2: रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्लसेन हैं वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय।
1: खिल गई सभा,
0: उत्तम उत्तम निश्चय यह भल्लेनाथ,
1: कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथे, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित,
0: माता दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हो विद्य शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित।
1: कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र,
0: देखो बंधुवर सामने स्थित जो ये भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, दश दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, लख महाभाव मंगल पद दल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व।
1: फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए,
0: चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर कम से कम, अधिक और हो अधिक और सुंदर, जाओ देवी दह उषह काल हो ते सत्वर, तोड़ो लाओ ओ कमल लौट कर लड़ो समर।
1: अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय। निश हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, है नहीं शरासन आज, है नहीं शरासन आज हस्त तूणी स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, सुन पड़ता सिंहनाद रण को लाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, पूजो परांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों की गुणग्राम, बीता वह दिवस।

0: हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समारादन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर थर थर यंबर। दो दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीर कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि। भर गए नयन द्वय
1: धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका।
0: वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गतिहत चेतन। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन।
1: यह है उपाय
0: कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन।
1: कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन।
0: कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय।
2: साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम।
0: कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंदस्मित मुख लक हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंगराग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंदस्वर वंदन कर।
2: होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन।
0: कह महाशक्ति राम के बदन में हुई ली,

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद

0: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा से क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी वी मुखिया

अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाँ।
0: कडल करेय खगकुला,
1: कडल करेय खगकुला, येनी तो मुगिला,
0: उद्द अगला,
1: उद्द अगला, जी की दनी तू,
0: बांदड़ा,
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है। हा?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाका,
1: बान लोक नगुव नाका,
0: हारो हक्की पालीगे,
1: हारो हक्की पालीगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बगे,
1: व्योम कानुआ बगे, हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा,
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ? हाँ।
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ?
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।

0: और जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना?
1: धा दिन ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

0: हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।
1: दूर दूर

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना बान लोक नगुनाक उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। थीम है अष्टलक्ष्मी।
1: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए
2: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार।
3: बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
4: नमस्कार।
3: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
4: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम कांग्रेस के सामने।

0: कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
0: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले ही उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले,

0: अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है, हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह

0: नहीं है, महिला देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे, कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट, और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था, मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी, मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल

0: छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे हम। जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे। तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था। तो सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब के जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजिशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ

0: ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में इतना जीडीपी जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत

0: बहुत बड़ा हाथ है, उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी तीन बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफ़ी नीतियाँ थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए। और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा।
1: सकते, बिल्कुल।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहाँ पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गाँव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफ़ी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गाँव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखे।

0: करने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
0: देखिए,
1: देखते हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो जैसा कि आप बता रहे हैं 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, थीम अष्टलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या एक से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

0: श्री चौधरी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इन पदों पर बहाली के लिए अगली परीक्षा 17 जून को होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने से नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। इससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया। प्रदेश में मानसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इधर विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा, चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा सहित अन्य प्रखंडों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں ملک کی صحت خدمات میں بڑی بہتری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ہی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت منصوبہ، آیوشمان آروگیہ مندر اور دیگر ڈیجیٹل صحت خدمات کے ذریعے زیادہ لوگوں تک علاج کی سہولت پہنچ رہی ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں ایمز کی تعداد 1 سے بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ وہیں مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت آج دنیا کے سب سے بڑے صحت منصوبے کا انعقاد پوری کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بیماری کے سبب کسی خاندان پر اقتصادی بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری آج پٹنہ واقع ودیوت بھون میں محکمہ توانائی کے 1,278 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح

0: और संघ बुनियाद रखेंगे। जनाब चौधरी पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली मंसूबे के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति सार्फिन के घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के काम का भी आगाज करेंगे। इधर वजीर आला ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान बेदारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गाड़ी के तवस्सुस से रियासत के मुख्तलिफ अजला में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की बेहतर खेती, जदीद ज़रई तकनीक और सरकारी मंसूबों की जानकारी फराहम कराई जाएगी। वजीर आला सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पिढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह हुसूलियाबी रियासत की खुशहाल सकाफती विरासत, रिवायती फन और दस्तकारी को कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर नई पहचान दिलाने वाली है। माइक्रो, छोटे और दरमियानी दर्जे की सनत के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी और वजीर आला सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजिर सराय में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। ये सेंटर 170 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत का निशाना सालाना 7,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देना और रोजगार जराए के तवसुस से हर साल 1,000 से जायद सनतकारों को इमदाद फराहम करना है। रियासत के सभी अजला में वाक़ मराकिस पर आज नशाबंदी सिपाही, वार्डन और मोबाइल दस्ता सिपाही तकरीरी के लिए तहरीरी इम्तहान 2 नशस्तों में मुनक़िद किया जा रहा है। सेंट्रल कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड के मुताबिक इस इम्तहान के तवसुस से 4,200 से जायद ओहदों पर बहालियां होंगी। इन ओहदों पर बहाली के लिए अगला इम्तहान 17 जून को होगा। सिपाही तकरीरी इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। बेहतर ट्रेन खिदमत दस्तियाब नहीं होने से नाराज तलबा ने स्टेशन अहाते में तोड़फोड़ और संगबारी की। इससे रेलवे की इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पटना के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस की मदाखलत से हंगामे पर काबू पाकर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की गई। रियासत में मानसून की शुमाली हद अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के असर से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के अजला में मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान बर्फबारी के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इधर महकमा ने आइंदा 2 घंटों के दौरान मगरबी चंपारण जिले के गौनाहा, चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा समेत दिगर ब्लॉकों में बारिश की पेशगोई जाहिर की है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना इलाके के मेडिकल कॉलेज के करीब आज हुए जबरदस्त सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत जाए वकूं पर ही हो गई, जबकि दिगर अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। छबीलापुर थाना के थाना इंचार्ज ने बताया कि 8 लोग ऑटो पर सवार होकर राजगीर मलमास मेला से स्नान करके अपने गांव कुचरा लौट रहे थे। इसी दौरान छबीलापुर में मेडिकल कॉलेज के करीब मुखालिफ सिम से आ रहे एक हाईवा ट्रक ने ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल, CCC लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत

0: आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकी

0: संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक

0: बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजपान की खुशबू

0: राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए। कितना खाना है, कैसे खाना है, ये तो आप अपने घरों में किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं इस बात पर निर्धारित करेगा। लेकिन आप टाइम टेबल अगर बना लेते हैं कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है तो ब्रेकफास्ट खाना ही है। अब देखिए, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैक्सिमम बच्चे देर से उठते हैं। अब देर से उठते हैं तो फिर देर से खाते पीते हैं और देर से खाते हैं तो पूरी दिनचर्या इसमें बदल जाती है। ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिन्हें बचपन से ही लागू कर हम अपने बच्चों को निर्धारित कर सकते हैं। और जैसे जैसे पढ़ाई बच्चों की आगे बढ़ती है ना, तो ऐसे में बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरम्भ में सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है रंग।
2: Thank you.

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बोल राधा बोल इस फिल्म में सुनिए कुमार सानू और पूर्णिमा को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म आईना में सुनिए लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी को सुनिए फिल्म आईना में।

लीजिए सुनिए फिल्म क्रिमिनल का ये गाना, आवाज़ें हैं कुमार सानू अलका याग्निक की, गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार एम करीम।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओ नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओ, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफ़ी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ज़िला अहल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ें थीं, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य

0: के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंते की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करें।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहती है।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम ने ही महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े।

0: भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
1: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो गांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
2: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूं।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहां? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
2: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
2: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
2: देवी गांधारी,
0: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
2: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुष्टासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
2: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खूबी तुम्हारे मन की, मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी।
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं थी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हट नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं।
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब

0: अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने।
0: गुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के 5 ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी, देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हट धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे क्या हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,

0: अगन धरी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रच दी है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।
1: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
0: उनकी रचनाओं में प्यार मोहब्बत की बातें हैं और फलसफा भी है।

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर

0: रही हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
1: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
0: वो तो बहुत पॉपुलर था।
1: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
0: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
1: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
0: अच्छा।
1: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
0: अच्छा।
1: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
0: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
1: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी।
0: हाँ।
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो,
0: हाँ।
1: लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत हुए। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ।
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई थी
0: दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने सपने थे, अपने शौक
1: तो।
0: थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो
0: होता
1: फिर
0: है,
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता, और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ।
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: ओ
1: बोलो
0: तुम
1: तुम कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम कौन
0: आहा, क्या
1: हो।
0: बात है, क्या
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: जी।
1: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया।

0: था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या मेरा
0: क्या
1: प्यार
0: मेरा प्यार पसंद है
1: पसंद
0: तो ये भी कितना सुंदर
1: है
0: सुंदर से
1: तुम्हें
0: गीत है,
1: बहुत स्वीट।
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत है
0: हर
1: ये, हर
0: पल के। तो
1: मौके
0: ये
1: के गीत है।
0: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
1: जी
0: लिखे
1: जी
0: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय
1: तुम हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत,
0: रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है।

0: जी, और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
1: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा,
0: जी
1: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में।
0: जी
1: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है
0: हम्म,
1: फिल्म इंडस्ट्री के
0: जी
1: लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे
0: हम्म,
1: वो थोड़े चिंतित थे,
0: किस बात पे।
1: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि हमको

0: लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे,
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे।
1: जी
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हीलचेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हीलचेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए।
1: जी
0: प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं
1: नहीं
0: चलते
1: आते।
0: हैं, वो
1: जी
0: वहीं खड़े रहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम
1: जी
0: था, और वो
1: जी
0: कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है। तो वो नियम को तोड़ा गया, उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं।
1: जी
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: हाँ, जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए,
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या-क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ
1: हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीज़ें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफ़ेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफ़ेद जामुन, हाँ काले नहीं सफ़ेद,
0: सफेद। हाँ हाँ
1: खैर एनीवे वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कढ़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता
1: हाँ,
0: होगा
1: तो
0: आपको।
1: सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे, तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी
0: अच्छा,
1: मजबूत है
0: क्या बात है।
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया है।
1: हाँ
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज़ दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी,
0: हम्म,
1: बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया,
0: जी
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं
0: जी,
1: ना
0: बिल्कुल,
1: लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं,
1: हाँ
0: दीपावली में।
1: दीपावली में। तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29:51 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांतकालीन सभा। श्रोताओं सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार हमारे ऊर्जावान युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट धारिणी आज फिर लेकर आई हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।
1: और मैं दिव्या आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ सपनों को मिलती है उड़ान, विचारों को मिलती है पहचान और युवा जोश को मिलता है अपनी बात कहने का खुला आसमान।
0: हम युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान के सबसे बड़ी ताकत है। नई सोच, नई तकनीक, नए अवसर और नए संकल्प के साथ आज का युवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है।
1: यही ऊर्जा, यही उत्साह और यही सकारात्मक बदलाव की भावना लेकर हर बार आपके बीच हम आते हैं।
0: तो तैयार हो जाइए कुछ नया सुनने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए और कुछ नया करने के लिए।
1: जी हाँ दोस्तों, अपने मन की सारी उलझनों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और जुड़ जाइए इस खूबसूरत सफर से।
0: आइए दोस्तों, जोश और उम्मीद के साथ सफर आज का हम शुरू करते हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में,
1: साथ ही महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री या कहे तो आधुनिक युग के मानव कैलकुलेटर नीलकंठ सोमयाजी के जन्म दिवस पर करेंगे उनसे जुड़ी कुछ बातें।
0: दोस्तों फिर जानेंगे भोजन के पीछे छिपे संस्कृति और इतिहास, यानी थाली, एक थाली और अनेक कहानियों के बारे में।
1: कार्यक्रम के अंत में जानेंगे कुछ रोचक तथ्य।
0: और इतना ही नहीं, कुछ गीत संगीत भी तो चलना चाहिए।
1: बिल्कुल, प्यारे गानों के साथ होंगी बहुत सी बातें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये पहला गाना।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना शाहिद माल्या की आवाज में, जिसे संगीत दिया है प्रीतम ने और फिल्म है मौसम।
1: दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो किसी की जिंदगी में नई उम्मीद, नई मुस्कान और नया सवेरा लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो रक्तदान और रक्तदाताओं से जुड़ा है।
0: हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान के लिए प्रेरित करना और उन रक्तदाताओं का सम्मान करना है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाने में अपना योगदान देते हैं।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के दिन ज्ञानी

0: दिन को, 14, माफ कीजिएगा दोस्तों, 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है?
1: क्यों डाल रही?
0: क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। उन्होंने ही रक्त समूहों की खोज की जिससे सुरक्षित रक्तदान संभव हो सका।
1: दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, प्रसव के दौरान कैंसर या थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक यूनिट ब्लड किसी एक नहीं बल्कि कई लोगों की मदद कर सकता है।
0: दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि एक हेल्दी व्यक्ति सामान्यतः रक्तदान कर सकता है और कुछ ही समय में उसका शरीर उस रक्त की भरपाई भी कर देता है।
1: पता है धारणी, अक्सर लोगों को लगता है ना कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
0: लेकिन सच ये है दिव्या कि यदि आप स्वस्थ हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं तो रक्तदान एक सुरक्षित प्रक्रिया है। डॉक्टर्स की देखरेख में किया गया रक्तदान समाज के लिए एक अनमोल सेवा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, एक छोटी सी पहल किसी की जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। वो कहते हैं ना कि रक्तदान महादान के साथ साथ जीवन दान भी है।
0: बिल्कुल
1: आपकी कुछ मिनटों की पहल किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस रक्तदाता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि जब भी संभव हो, जब भी अपनी स्वेच्छा से हम रक्तदान करना चाहें तो हम जाके जरूर दूसरों की मदद करें, किसी को नई जिंदगी दे रक्तदान करके।
1: क्योंकि इंसानियत का सबसे खूबसूरत रंग वही है जो किसी की नसों में जीवन बनकर दौड़ रहा है।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत चंदा की डोली सोनू निगम की आवाज में। इसी के साथ दोस्तों, युववाणी में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान विद्वान से परिचित कराने जा रहे हैं जिनकी गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां विश्व भर में सराही जाती हैं। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री नीलकंठ सोमया जी की।
1: नीलकंठ सोमया जी का जन्म 14 जून 1444 लगभग 15वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वो भारतीय गणित और खगोल विज्ञान की प्रसिद्ध केरल परंपरा के प्रमुख विद्वानों में से एक थे।
0: उन्होंने अपने समय में ग्रहों की गति, गणितीय गणनाओं और खगोलीय सिद्धांतों पर गहन अध्ययन किया। उनके इन्हीं अध्ययनों पर आधारित कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के तंत्र संग्रह भी मौजूद हैं।

0: सोचिए दोस्तों, जब आधुनिक दूरबीनें और कंप्यूटर नहीं थे, तब केवल गणना, अवलोकन और बुद्धिमत्ता के आधार पर हमारे विद्वान आकाश के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे थे। दिव्या,
1: यही भारतीय वैज्ञानिक सोच की शक्ति थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक ऐसा समृद्ध भंडार तैयार किया कि जिसे आजकल पूरे विश्व में जाना जा रहा है।
0: ज्ञान वो दीप है जो समय की सीमाओं को पार कर आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रकाशित करता है। धारिणी,
1: जी बिल्कुल, और नीलकंठ सोमया जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता।
0: आइए दोस्तों, हम अपने महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को विरासत को जाने, समझें और उस पर गर्व करें। और इसी के साथ कार्यक्रम में हो चला है अगले गाने का। ये गाया है गाना सोनू निगम ने और एल्बम है दीवाना।

0: दोस्तों, इस सूदिंग से म्यूजिक के बाद आपका फिर से स्वागत है युववाणी में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, अपनी रेडियो दोस्त धारिणी और दिव्या के साथ। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोजन की।
1: लेकिन आज भोजन केवल स्वाद तक सीमित नहीं रहेगा। आज हम जानेंगे कि हमारी एक थाली में कितनी कहानियां, कितनी परंपराएं और कितना इतिहास छिपा होता है।
0: दोस्तों, जब भी हमारे सामने एक थाली सजती है, हम अक्सर उसके स्वाद, रंग और सुगंध पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस थाली में परोसे गए हर एक पकवान अपने साथ सदियों पुरानी यात्रा लेकर आए हैं?
1: हमारे भोजन पर इतिहास की भी गहरी छाप है। आज जिस आलू, टमाटर और मिर्च का उपयोग लगभग हर भारतीय की रसोई में होता है, वो मूल रूप से भारत के थे ही नहीं। ये सैकड़ों वर्ष पहले विदेशी व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से भारत पहुंचे और धीरे धीरे भारतीय खान पान का अभिन्न हिस्सा बन गए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी तरह मुगल काल ने भारतीय भोजन को एक नई दिशा दी। बिरयानी, कबाब, शाही टुकड़ा, ये सब बारे में बात करके तो मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं भी ये सब चीज़ें खाऊं। खैर, अभी खाने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन चलिए इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताती हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ और कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं दोस्तों, जो कि भारतीय और फारसी संस्कृतियों के अद्भुत मेल का एक परिणाम है। भोजन ने न केवल संस्कृतियों को जोड़ा है, बल्कि सभ्यताओं के बीच संवाद का एक माध्यम भी बनता आया है शुरू से।
1: भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं और संबंधों का भी एक प्रतीक है।
0: बिल्कुल।
1: त्योहारों पर बनने वाले विशेष व्यंजन इसका प्रमाण है। होली की गुजिया, ईद की सेवइयां, दिवाली के लड्डू और क्रिसमस का प्लम केक, हर व्यंजन अपने साथ उत्सव, प्रेम और सामूहिकता का संदेश लेकर आता है।
0: दिव्या, क्रिसमस के प्लम केक से मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या मैं बताऊं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल धारिणी।
0: हमारे कॉलेज में ना सभी स्टूडेंट्स को क्रिसमस का बहुत इंतजार रहता था। पता है क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि हमारे कॉलेज में जब क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता था, उसके बाद सभी बच्चों को प्लम केक जरूर दिया जाता था, और वो प्लम केक इतना स्वादिष्ट होता था कि मैं क्या कहूँ।
1: आपने प्लम केक की इतनी तारीफ कर दी है ना धारिणी, कि अब मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद मैं जरूर प्लम केक एक बार जाके ट्रेस्ट करूंगी।
0: बल्कि मैं तो अपने श्रोता दोस्तों को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि वो भी प्लम केक जाके टेस्ट जरूर करें, जिन्होंने नहीं टेस्ट किया है, और जो बार बार खा चुके हैं वो एक बार और खा लें, इसी बहाने क्रिसमस याद आ जाएगा
1: बिल्कुल
0: उन्हें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपनी इन्हीं बातों के साथ। जब भी हम परिवार के साथ बैठकर

0: भोजन करते हैं तो वो केवल केवल वो खाना बांटा नहीं जाता, बल्कि अनुभव, स्मृतियाँ और अपनापन भी साझा किया जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि भोजन हमारी संस्कृति का पहचान है और हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: हमारे कुछ श्रोता दोस्तों का भी कहना है कि उनके मन पसंदीदा पकवान उन्हें उनकी संस्कृति से जोड़ते हैं। क्यों धारणी?
0: जी बिल्कुल, इसी तरह हमारी एक श्रोता है गुड़गांव से, सिद्धि आर्य, जो कि कहती हैं कि मैं वैसे तो पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरी सबसे पसंदीदा डिश छोले भटूरे है। इसका स्वाद मसालेदार, चटपटा और बहुत लाजवाब होता है। जब भी मैं छोले भटूरे खाती हूँ, मुझे अपनी पंजाबी संस्कृति और परंपराओं की याद आती है। ये व्यंजन पंजाब की पहचान माना जाता है और वहाँ के लोगों के खाने के प्रति प्रेम को दर्शाता है। सिद्धि आर्य कहती हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ छोले भटूरे खाना मुझे अपनेपन और खुशियों का एहसास कराता है, इसलिए ये डिश उनके दिल के बहुत करीब है।
1: वैसे ही हमारी मैथिली की बेटी अस्मिता कहती हैं कि माछ भात और दही चूड़ा उनके कल्चर का स्पेशल खाना ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य धागा है जिसने उन्हें उनकी संस्कृति और संस्कारों और अपनों से हमेशा जोड़ के रखा है। ये स्वाद उनके लिए गवाह की बात है कि वो चाहे जहाँ रहें, उनका दिल हमेशा मिथिला के पोखर, मखान और माछ से ही धड़कता है।
0: हमारी एक और श्रोता ने हमें कहा है कि उन्हें शाही पनीर बहुत पसंद है,
1: वाह वाह वाह धारिणी।
0: और साथ ही साथ जब भी शाही पनीर की बात आती है तो वो कहीं भी जाके शाही पनीर नहीं खाना पसंद करते हैं, बल्कि एक बीर का ढाबा है वो वहाँ जाके इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। हमारे इन श्रोता का नाम है उदय, और उदय ने ये भी कहा है कि उन्हें जब भी ये पनीर मिल जाता है, शाही पनीर मिल जाता है, तो उसका पहला निवाला खाते ही उन्हें पूरे पंजाब के दर्शन हो जाते हैं।
1: अरे वाह धारिणी, इतने सारे लजीज पकवान की आपने बात कर दी है ना, मैं क्या बताऊँ
0: और
1: आपको।
0: हमारे श्रोताओं ने भी बल्कि बात की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो उनके मन से जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और किस तरह से उन्हें उससे लगाव है।
1: और हमारे यहाँ कहावत भी है ना, सबके दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जब दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है तो क्यों ना कुछ खाने पीने से जुड़े गीत संगीत भी हो जाए। तो चलिए इसी बात पर दोस्तों सुनते हैं शान की आवाज में ये गीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम युववाणी में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना अपने रेडियो दोस्त धारिणी और दिव्या के साथ। तो दोस्तों, आज है रविवार और रविवार के दिन हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है स्वरांजलि। जी हाँ, साहित्य और सुरों से सजी स्वरांजलि। आज हम स्वरांजलि में सुनने जा रहे हैं हमारी साहित्य प्रेमी दीक्षा कुमारी से अंशुमन झा की ये वार्ता।
4: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। आज रविवार है और आज के दिन हम लेकर हाजिर होते हैं स्वरांजलि। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जो LLB की छात्रा हैं, लॉ की छात्रा हैं, कानून की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन साहित्य में भी इनका काफ़ी मन लगता है। आप हैं दीक्षा। तो दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
5: धन्यवाद सर।
4: दीक्षा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि भाई लॉ कर रही हैं आप, कानून की पढ़ाई, तो ऐसे में साहित्य से कैसे लगाव है?
5: ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब रहेगा। जो साहित्य का भी यही है कि आप अपने हृदय की बातों को स्पष्ट रख सकें, यानी कि वक्ता या अधिक वक्ता बन के आप यही तो करते हैं, आप बातों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने रखते हैं। तो बातों को स्पष्टी से रखना ही तो मूल है, और इसीलिए ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी अपनी ओर प्रभावित करती हैं।
4: दीक्षा, बातें तो आपने काफ़ी गंभीर कही हैं, लेकिन एक बात है, मतलब थोड़े लाइट वेन में मैं कह रहा हूँ कि भाई कानून की बातें काफ़ी इतनी स्पष्ट भी नहीं होती, काफ़ी उलझी होती हैं और सामान्यतः समझ में नहीं आती, लेकिन ठीक वैसी ही बात है जैसे कवि की बात, जिसे कविता की समझ नहीं है उसे समझ नहीं आती, उसे उलझी हुई लगती है। तो वैसे ही आप जो पढ़ाई पढ़ रही हैं तो आपके हिसाब से कानून की बात आपको समझने में उतनी दिक्कत नहीं आती होगी, और साथ ही दोनों ही चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव है ना, आप क्या कहेंगे?
5: सही कहा आपने, कानून भी इसी तरीके से हर समय बदलता रहता है, कानून उसके अनुसार बदलते हैं, वैसे ही हमारा साहित्य भी है, सदियों से बदलता आ रहा है, समय के अनुकूल परिवर्तित होना जानता है, यही तो खूबसूरती है इसकी।
4: और परिवर्तन संसार का नियम भी है।
5: बिल्कुल।
4: तो दीक्षा, आपसे आपकी ये जो कविताएं हैं जो आपने लिखी हैं वो हम जरूर सुनेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि भाई कानून की पढ़ाई करने में तो

0: समय काफी लगता होगा। ऐसे में साहित्य सृजन के लिए क्रिएटिव टाइम निकालना कितना कठिन होता होगा आपके लिए, तो कैसे लिख पाती हैं?
1: इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, मल्टीटास्किंग। लेकिन बात यही आ जाती है कि जो चीज़ आपके हृदय के बहुत करीब हो, आपको अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी भक्ति के लिए, निष्ठा के लिए जिस तरीके से समय निकालना नहीं पड़ता, वो समय उनका ही है। उसी तरीके से जैसे कविताएं, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है तो मुझे समय निकालना नहीं पड़ता। मैं हर वक्त कुछ सोच रही होती हूँ, कानून की किताबों के बीच भी मैं अपनी इन कविताओं को नहीं छोड़ पाती हूँ।
0: क्या बात है, तब जब आपने इतना मन लगा के कुछ लिखा है तो चलिए सुनते हैं, कोई अपनी कविता सुनाइए।
1: तो सामाजिक विडंबनाओं के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, जो बेटियां अक्सर महसूस करती हैं पर शायद कभी कह नहीं पाती। कविता का शीर्षक है, कुछ तो अजीब है। बेटा ही चाहिए कहने वाले समाज में, क्यों तुम्हारे पिता ने ईश्वर से एक बेटी की ही मन्नत मांगी होगी? कुछ तो अजीब है। बेटी है जो भी परोसो खा लेगी वाली परंपरा में, क्यों तुम्हारी मन पसंद की चीजें थाली में सजाई होगी? कुछ तो अजीब है। थोड़ा पढ़ लिख लेगी वाली सोच में, क्यों तुम्हें प्रख्यात विद्यालयों में पढ़ाया गया होगा? कुछ तो अजीब है। लड़कियां कम बोलती हैं वाले ख्याल में, क्यों तुम्हें हर मंच पर अपनी बात स्पष्ट और निर्भय होकर कहना सिखाया होगा? कुछ तो अजीब है। हिसाब से चलो, सर झुका के चलो वाली भीड़ में, क्यों तुम्हें बागी बनाया होगा? कुछ तो अजीब है। किताबें छोड़ चूल्हा चौका सीख ले कहने वालों के बीच, क्यों तुम्हें वकालत की किताबों में उलझाया होगा? कुछ तो अजीब है। बेटियां पराए घर की होती हैं वाले समाज में, क्यों तुम्हें घर की रौनक और आत्मा बताया होगा? कुछ तो अजीब है। क्या सच में ये अजीब है?
0: बहुत ही अच्छी कविता आपने कही है दीक्षा, और भाई हम तो कहेंगे कविता जो है बहुत ही सजीव है। अच्छा दीक्षा, एक बात है कि हमारी सरकार जो है, केंद्र की सरकार, वो बहुत ही सजग है इन बातों को लेकर के। और देखिए, सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत सारे कानून ऐसे लाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लीजिए, या हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत का जो अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारी सरकार, हमारा समाज इसके पीछे है, और इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से हम लोग विचार भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। चलिए, जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आज है रविवार और आज स्वरांजलि में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं युवा कवि और लॉ की छात्रा दीक्षा, और दीक्षा से बातचीत हो रही है। आइए इनसे जानते हैं इनकी कामयाबी का राज। तो दीक्षा, बताइए कि इतने सारे मल्टीटास्किंग आजकल के युवाओं को करने पड़ते हैं, कॉलेज जाओ, असाइनमेंट करो, टाइम पर घर भी आओ, किसी को कोई टेंशन ना हो, और उसके बाद जो आपका साहित्य सृजन का जो एक शौक है, जो जुनून है, वो भी है, तो इतने सारे काम करने में भाई दिक्कत तो आती होगी।
1: ये तो नेतृत्व का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कुछ भी तो नहीं करना पड़ता ना, हमें भोजन कब मिलेगा की चिंता है, क्या खाएंगे की चिंता है, कहाँ रहेंगे की चिंता है, क्या पहनेंगे की चिंता है। माता-पिता ने सारी चिंताएं तो मुक्त कर दी है, एक ही तो चिंता दी है कि पढ़ लो, कुछ बन जाओ, थोड़ा नाम रोशन कर दो, अपना भी हमारा भी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सरल काम है एक विद्यार्थी के लिए, अब क्योंकि बहुत ही साधारण हो गई है अब, क्योंकि सारी जो मुश्किलात हैं वो तो हमारे माता-पिता ने खुद ही उठा रखे हैं, हमें तो बहुत आसान काम दिया है।
0: जी, बहुत ही सरलता से आपने अपनी बात रख दी है दीक्षा। अच्छा दीक्षा, तो इसी बात पर बताइए कि भविष्य के लिए क्या सोचा है, आगे क्या करना है?
1: अभी तो मेरी कानून की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैंने एक जज बनने का सोचा है, न्यायाधीश, उसी की तैयारी में जुट जाऊंगी।
0: क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि आपका सपना साकार हो। और अब हम चाहेंगे और हमारे श्रोतागण चाहेंगे कि एक और कविता भाई आपसे सुनी जाए, तो सुनाइए अपनी एक और कविता।
1: तो जब मैंने आपको बताया कि घर वालों ने कितनी आसान कर दी है जिंदगी, तो उस पे मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी कविता शुरू करूंगी। तो कविता घर पे है, आइए शुरू करें।

0: कहते हैं, ये वही है जो तुम्हें रोने नहीं देगा, तुम्हें उदास होने नहीं देगा, भटक भी जाओ तो खोने नहीं देगा, और ये वही घर है जो तुम्हें कभी भूखा सोने नहीं देगा। कविता शुरू करते हैं। क्या है ये घर? चार दीवारें ही तो हैं, दीवारें वो जो तुम्हें महफूज रखेंगी। कुछ लोग ही तो हैं, लोग वो जो तुम्हारे अपने हैं। कुछ बातें ही तो हैं, बातें वो जो तुम्हारे दिल से होती हैं। कुछ रिश्ते ही तो हैं, रिश्ते वो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कुछ एहसास ही तो हैं, एहसास वो जो तुम्हें निरंतर अपनाते हैं। कुछ मर्यादा ही तो है, मर्यादा वो जो तुम्हें राह भटकने से बचाती है। कुछ परंपराएं ही तो हैं, परंपराएं वो जो तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। एक भाषा ही तो है, भाषा वो जो तुम्हारा मूल है। एक आज़ादी ही तो है, आज़ादी वो जो तुम्हें उड़ान भरने देता है। एक डोर ही तो है, डोर वो जो तुम्हें प्रेम से बांधे रखता है। यही तो घर है।
1: क्या बात है, क्या बात है। इतनी गंभीर कविताएं लिख लेती हैं आप भाई दीक्षा, सुन के बहुत अच्छा लगा हमें, और हमारे श्रोताओं को भी यकीनन ये सारी कविताएं जो अभी आपने सुनाई हैं उन्हें काफ़ी पसंद आ रही होंगी। अच्छा दीक्षा, इन कविताओं के बाद एक बात और जो मेरे मन में आ रही है, और शायद बाद में ये बात भूल जाऊँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे एक क्वेश्चन करना है।
0: बिल्कुल।
1: आपने बताया कि आप LLB कर रही हैं, भाई बचपन से ये कौतूहल रहा है मेरे मन में कि LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ,
0: ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं,
1: तो इसमें ये दूसरा L ये क्यों होता है?
0: ये असल में एक लैटिन टर्म से लिया गया है, एक अलग भाषा का टर्म है, और वहां से हमने ये लिया है, और LLB हम इसे शॉर्ट में बैचलर ऑफ लॉ कह देते हैं।
1: चलिए श्रोताओं, तो अभी आप सुन रहे थे दीक्षा को भाई बोलते हुए भी और ज्ञान बांटते हुए भी, और अब हम दीक्षा से एक और कविता, एक और उनकी रचना वो सुनने वाले हैं।
0: तो कविता है तुम क्या हो।
1: तुम क्या हो, क्या हो तुम? कवि हो, लॉ की छात्रा हो, क्या हो तुम? चलिए मजाक की बात है, कविता का शीर्षक है तुम क्या हो।
0: ये भी स्त्री पे ही है समर्पित। तुम वृक्ष हो, तुम वायु हो जीवन जीने को जरूरी। तुम अग्नि हो, तुम ज्वाला हो, राख कर दो सृष्टि पूरी। तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञानी हो, मन में भरा संचार भी। तुम कविता हो, तुम लेख हो, उसमें छुपा जो सार भी। तुम मान हो, मर्यादा हो, तुम ही पिता का गौरव भी। तुम स्वप्न हो, साकार हो, तुम ही तो कुल का सौरव भी। तुम लक्ष्मी हो, तुम दुर्गा हो, उनकी करीब भक्ति भी हो। तुम माँ भी हो, तुम ममता हो, उसमें मिली शक्ति भी हो। तुम बीज हो, तुम वृक्ष हो, तुम जीवन का संचार भी। तुम आज हो, तुम कल भी हो, और नित नवीन विचार भी।
1: वाह, इतनी गंभीर कविताएं आप लिखती हैं दीक्षा, और वाकई काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे कविताएं सुन करके, और काफ़ी अर्थपूर्ण कविताएं हैं आपकी। लेकिन कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। दीक्षा बहुत बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाला है, हमारे स्टूडियो आई और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें आज आपने साझा की हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना साहित्य प्रेमी दीक्षा कुमारी और अंशुमन झा की भेंटवार्ता। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म है नमस्ते लंदन।

0: डूरियन दुनिया का सबसे तेज बदबू वाला फल है। ये फल डूरियो के पेड़ पर उगता है और ज्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। दोस्तों, कई बार हम ना लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और साथ ही कैल्शियम बढ़ने की भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप फिग्स यानी कि अंजीर खाकर भी अपने कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको दूध पसंद नहीं है या फिर उसे पचाने में मुश्किल होती है, जिसको हम लोग कह देते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट है हम, तो ऐसे समय पर अगर आपको अपना कैल्शियम बढ़ाना है तो अपने डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम शामिल कर सकते हैं अंजीर खा के।
1: और दोस्तों, एक औसत आकार के अनार में 200 से 400 तक बीज हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे आप गिन भी सकते हैं।
0: जरूर दोस्तों, तो क्या कहते हैं कि दिव्या से ही इसकी शुरुआत करते हैं। दिव्या, अगली बार आप जब भी अनार खाएं तो गिन जरूर लीजिएगा कि उसमें कितने बीज हैं।
1: मेरी कोशिश पूरी होगी धारिणी।
0: और दोस्तों, क्रैनबेरी उछल सकता है। क्या आपने कभी ऐसा पहले सुना है कि कोई ऐसा फल है जो कि उछल सकता है? मुझे भी पहले पहले ये सुन के बहुत हंसी आई थी, लेकिन दोस्तों ये पक्की बात है कि क्रैनबेरी उछल सकता है और इसे आप खुद भी आजमा कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ रोचक तथ्यों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है।
1: इसी के साथ हम भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर। उम्मीद है कि युवाणी की आज की कड़ी आपको हमेशा की तरह काफी पसंद आई होगी और आगे भी आप यूं ही युवाणी का आनंद लेते रहेंगे।
0: दोस्तों, अपने फीडबैक्स हमसे जरूर शेयर करें। कुछ कमी रह गई हो या फिर आपके कुछ सुझाव, शिकायतें हों तो हमारी ईमेल आईडी पर जरूर हमें सूचित करें। हमारी ईमेल आईडी है feedbackairpatna@gmail.com। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमारी ईमेल आईडी है feedbackairpatna@gmail.com। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। फिर मिलेंगे युवाणी की एक नई कड़ी में। और वक्त से थोड़ी सी मोहलत मांग जा रही हूं आपको छोड़। फिल्म
0: बेवफा के इस प्यारे से ट्रैक के साथ जिसको आवाज दी है उदित नारायण ने।

0: दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के रोचक तथ्यों की। तो दोस्तों हमने आज लजीज व्यंजनों की बात की, तो क्यों ना अब जरा फलों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी जान लें।
1: दोस्तों।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम भारती।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता नमस्कार, आजुक भारती में पवन अपने लोकनिक स्वागत करते हैं। श्रोता आई भारती में प्रेमलता मिश्र प्रेम से कथा सुनब अहाँ एसगरे छी, संगे ही श्यामा झा किछ गीत सुनौती, मुदा पहिने आओ किछ हमरा लोकनि गपशप कऽ ली। श्रोता हमरा लोकनि के शरीर में जे खून दौड़ैत अछि ओ हमरा सबके शरीरक महत्वपूर्ण भाग थिक। कोनो बीमारी वा दुर्घटना में जखन शरीर में खूनक मात्रा कम भऽ जाइ छै ओहि व्यक्ति के बाहर से खून चढ़ेबाक जरूरत होइ छै। खून जकरा हिंदी में रक्त आ मैथिली में सोनित सेहो कहल जाइ छै, ओहन जरूरतमंद व्यक्ति के लेल अवश्य दान करी जिनका एकर जरूरत छै। रक्तदान एहन काज थिक जाहि सँ ककरो जान बचायल जा सकैत अछि। 1 यूनिट खून मने 350 मिलीलीटर खून से कखनो कखनो एकटा की 3-3 व्यक्ति के जान बचायल जा सकैत अछि। स्वतः रक्तदान से जहाँ आन व्यक्ति के जान बचायल जा सकैत अछि तो दोसर दिस दान करय वाला व्यक्ति के सेहो बहुत रास फायदा छै। हाँ स्वतः, आप जे दान करै छथिन हुनका की फायदा छै से हमरा लोकनि गप करी। दान करय वाला व्यक्ति के शरीर में अतिरिक्त आयरन के स्तर संतुलित होइत अछि, ऐसे हृदय रोगक खतरा सेहो कम होइ छै। 1 यूनिट खून देला से 650 कैलोरी धरि कैलोरी जे छै से जरैत अछि। रक्तदान के दोसर के मदद कयला से संतुष्टि तऽ भेटबे करत, संगहि गर्वक भावना जन्मैत अछि। स्वतः आइ जे रक्तदानक गप कऽ रहल छी ओकर मुख्य कारण की छै? हाँ स्वतः, आइ विश्व रक्तदान दिवस थिक। ई दिवस सब वर्ष 14 जून का मनाओल जाइत अछि। आइ 14 जून छै तऽ एहि वर्षक जे विश्व रक्तदान दिवस छै तकर विषय थिक मानवताक एक बूंद रक्तदान।

0: श्रोताई छली श्यामा झा सुना रहा छलिए विद्यापति गीत। हिनका गीतक लेल धन्यवाद दियन। ओना हिनका से एखन आर गीत सुनब हमरा लोकन। आओ एखन सुनी हमरा लोकन कथा। शीर्षक अछि अहाँ एसगरे छी। कथाकार छथि प्रेमलता मिश्र प्रेम।
1: अहाँ एसगरे छी? हाँ हम एसगरे छी। एसगरे के अछि? ई कोन पूछबाक गप भेल? हम कहलहुँ ने हम एसगर छी। एसगर रहबाक कारण तऽ किछु भऽ सकैत अछि। अहाँ तऽ हद कऽ देलहुँ, अनेरे बातके बढ़ौने जा रहल छी। कोनो हमही टा एसगर छी? बहुतो गोटे एसगर छथि। ओना सत्य जे पूछी तऽ सब एसगरे अछि। सभक पाछा कोनो ने कोनो कारण होइते छैक। जँ कारण कोनो छैक तऽ कारण जानि कऽ अहाँ की करबैक? आइ तैयो कनेक बुझतिए कि ने? अहाँ तऽ एकदमे सँ हमर पाछा पड़ि गेल छी। अहाँके एहन फजूल प्रश्नसँ तऽ हम तबाह भऽ गेल छी। देखू ने, काल्हिए नमिता फोन केने छली। मौसी अहाँ कतऽ छी? हमरा तामसो उठल, कनेक जोरसँ कहि देलियनि। तैं ये हम कतऽ रहब? एखन तऽ अपन घरमे छी। भोरुका पहर छैक तैं अखबार पढ़ैत छी। कहू अहाँ कोना मोन पड़लहुँ? मौसी हम एसगर भऽ गेल छी। से कोना? अपने नहि रहला? आहा, से तऽ नहि बुझल छल। अच्छा आर सब कहू, बच्चा सब कतऽ अछि? मौसी तीनू बच्चाक विवाह दान भऽ गेलैक। सब अपन अपन परिवारक सङ्गे नीके ना अछि। जेठका गुजरातमे अपन व्यवसाय ठाढ़ कयलक, नीक आमदनी छै। माझिल पुणेमे रहैत अछि, ओकरो बैंकमे नौकरी छैक। एकटा दू बरखक नेना छैक। छोटका दुबई चलि गेल, सबसँ नीक आमदनी ओकरे छैक। मुदा की कहू,

अपने मोने ओम्हरके छौड़ी से बियाह कऽ लेलक। लिअ तऽ ई कोन अन्हेर भेलैक, प्रसन्न अछि ने, तखन किएक उदास छी? सब प्रसन्न तऽ अहूँ प्रसन्न रहू। नहि मौसी, हम एकदम एसगर भऽ गेल छी। गाममे छलहुँ तऽ मोन नहि लगैत छल, केओ गप्पो करयवला नहि छल। सङ्गमे एकटा 10 वर्षक धनकी बालीक बेटी रूपालीके सङ्ग लऽ पटना आबि गेल छी। कतेक खुशामद केलियै, भरोस देलियै, हम एहि रूपालीके खूब पढ़ेबै आ नीके ना रहलहुँ तऽ एकर विवाहो हम ही करा देबै। धनकी बालीके बड़ मनोरथ छलैक जे ओकर बेटी टाउनमे जा कऽ पढ़तै। ओ हमरा पर भरोस सेहो कयलक, तखने ने आबऽ देलकै। छोट सन एकटा 2 कोठरीके मकान भेट गेल अछि, ओकरे सङ्ग रहि रहल छी। लगेमे एकटा नीक सरकारी इसकुल छै, ओहीमे ओकरा नाम लिखा देलियै। हे, देखै छियै छौड़ीके मोन लागि गेलैए। अहाँके फोन नम्बर कतहुसँ भगवती उपरा देलनि तऽ जानमे जान आबि गेल। देखू ने, नम्बरो लागि गेल तऽ अहाँसँ गप भऽ रहल अछि। आब एक दिन घरे अबै छी तऽ सङ्ग बैसि कऽ भरि पेट गप करब। हँ हँ, आउ ने, कतेक दिन मुँहो देखना भऽ गेल, मुदा जँ आयब तऽ फोन कऽ लेब। ओना तऽ बेसी कतहु जाइ अबैत नहि छी, मुदा तैयो कोनो एहन बेगरता भऽ जायत तऽ बहरा पड़िते अछि। हँ, जँ आयब तऽ रूपालीके सेहो सङ्ग नेने अयबै, कनेक हमहूँ तऽ देखबै। मौसी, हम कखनहु ओकरा एको क्षण एसगर नहि छोड़ैत छियै, वएह तऽ हमर पंथक पाकड़ि भेल अछि। तैँ तऽ कहल गेल छै जे अपने संताने नहि नितराय, नहि जानि ककरासँ कखन सुख भेटत से कहब कठिन। आब कने स्नानो अबेरे भेल जा रहल अछि, देखू कोनहुना एसगरुआसँ जान छूटल। लगैए फेर किनको फोन आबि रहल अछि। की आबो अहाँ एसगरे छी? अहाँ के छी, अन्हेरे बीचमे आबिकऽ हमर एकांत भंग करैत छी? काकी, गोर लगै छी, नीके रहू। के छी, चिन्हलहुँ नहि? हम ज्योति। कोन ज्योति? मनोज दासक बेटी, अहीँके मोहल्लामे रहैत छलहुँ। अहाँके घर तऽ हमर मम्मी पापा खूब आन जान छलनि। पापाके बदली भऽ गेलनि तऽ हमसब भागलपुर आबि गेलहुँ। काकी, बिसरि गेलहुँ, कनिके टा रही तऽ हमरा बबली आ गुड्डीके हाथमे गुड़क डेब धरा कोना फुसलाके कंछेदियासँ कान छेदा देने रही अहाँ। ओहि दिन खूब कानल रही हमसब। मम्मी कहलक, चुप भऽ जो, घाव सुखा जेतौ तऽ गहना कीन देबौ, गहना पहिरके खूब सुंदर भऽ जेबै। ज्योति, मुदा एते वर्षक बाद कोना मोन पड़लहुँ हम? अच्छा कहू, एखन कतऽ छी? काकी, एखन तऽ हम पुणेमे छी, तहिया तऽ कुमारिये छलहुँ जखन अहाँ सभक मोहल्लामे छलहुँ। भागलपुरमे आगूक पढ़ाई करैत रही, तखने पापा बियाह करा देलनि। परिवार तऽ नीक भेटल, पति सेहो LIC मे अधिकारी छलाह। 3 वर्ष भेल अपने अचानक विदा भऽ गेलाह, आब हम एकदम एसगर छी। आँ, ई की कहलहुँ, एतबा दिनक बाद गप भेल तऽ एहने समाचार सुना देलहुँ। कतेक दिन पर गप भऽ रहल अछि? काकी, 36 वर्ष भऽ गेल, मुदा हम अहाँके कखनहु नहि बिसरल रही। एखनो कहाँ बिसरल छलहुँ? काकी, अहाँ हड़बड़ायल तऽ नहि ने छी? नहि नहि, कहू ने। हमर बेटाक विवाह भऽ गेल, हुनका रहिते ई काज सम्पन्न भऽ गेल, कनिया आ परिवार नीक भेटल। आब असल काज कन्यादान रहि गेल अछि। हमर बेटी मनीषा BEd कऽ चुकल अछि, ओकर इच्छा शुरूएसँ शिक्षिका बनबाक छैक, प्रयासमे लागल अछि। ई तऽ नीक बात, महिलाक हेतु सबसँ नीक नौकरी अछि। कतौ नीक जगह नीक इसकुलमे सेलेक्शन भऽ जाइक से आशीर्वाद दियौ। मुदा काकी, बियाहो आब आवश्यक छैक। अहाँके नजरिमे जँ कोनो नीक परिवार नीक लड़काक जानकारी भेटै तऽ हमरा एहि नम्बर पर खबरि करब। हँ हँ, मनीषाके एकटा फोटो आ ओकर बायोडाटाक सङ्ग हमरा पठा दे। अच्छा, अहाँके सासुर कतऽ अछि? बलाट। बलाट तऽ नीक गाम अछि। काकी, बच्चा सब आब गाम जाइत कहाँ छैक? कोनो काज कर्तव्यता भेल तऽ हमरा एसगरे जाय पड़ैत अछि। की करबैक, सबठाम एहने समस्या छैक। बच्चा सब दिन शहरमे रहि गेल तऽ गाममे ओ माहौल ओकरा नहि भेटैत छैक, मुदा तैयो गामक नाम तऽ लोक पुछबे करैत छैक। काकी, एकटा बात तऽ कहब बिसरि गेलहुँ। हँ हँ, कहू ने।

0: हमर गायत्री पिसीसँ अहाँ किछु लगौने छलहुँ ने? हँ, गायत्री दाईसँ तऽ हम जोड़ी लागल छल हमरा। किएक गायत्री दाई आइकाल्हि कतऽ छथि, कोना रहैत छथि? ओ तऽ आब हमरा कहियो मोनो नहि पारै छथि। आब ओ नहि रहली, पीसा एसगरे ओतेटा मकानमे रहैत छथि, सङ्गमे एकटा टहलू छनि, तकरे भरोसे जीवि रहल छथि। टहलू मुदा नीक भेट गेल छनि, अपन संतान जतेक ध्यान नहि राखि सकै छै ताहिसँ बाढ़ि कऽ हुनक सेवामे लागल रहैत छनि। से की अपन धियापुता सब कतऽ छनि? एकटा बेटा कृष्णकान्त कनाडामे रहि रहल छथिन, जेठ बेटी चंडीगढ़ आ छोटकी कोलकातामे। छोटकी बेटी जमाय बहुत जिद कैलथिन, चलू हमरे सभक सम रहू, मुदा किन्ने हुन मानबा लेल तैयार नहि। बूढ़ा एकदमे भसिया गेल छथिन, अपन तीनू टा फ्लैट तीनू संतानक नामे लिख देलखिन। कहै छथिन हम कतहु नहि जायब, बहुत कष्टसँ ई मकान बनौलहुँ, से के भोगत? हम जा धरि जीअब एहि घरमे रहब, एहि घरमे मरब। कृष्णकान्तक सङ्ग विदेशी धरती पढ़क, एक घोंट पानियो हमरा लेल बिख अछि बिख। जमाके देखबैत कहलथिन, देखै छी अपन एहि अलमारीमे एक बोतल गंगाजल रखने छी, सिंटुआके देखा देने छी, जखन हमर बेसी मोन खराब हैत तऽ अपने हाथे गंगाजल पिया दिहें, अपन संतानक सुख हमरा नहि लिखल अछि। पड़ोसी एकटा मित्र छथि जोगा बाबू, ओ कखनो काल भेंट करऽ अबै छथि, सङ्गे सङ्ग चाह पीबैत छी आ कनि अखबार पढ़ैत छी, बस एतबे टा हमर संसार अछि। हुनको बुझा देलियनि अछि जे हमरा अस्पतालमे नहि लऽ जायब, हम अपन एहि घरमे मरब, हमर अंतिम इच्छा इएह अछि। सबसँ मोह भंग भऽ गेल, की आबो एसगरे छी? अहाँ के छी? बेर बेर हमरा एकांतमे आबि हमर शान्तिके भंग करैत छी। हम कहाँ क्यों छी, कतहुसँ नहि आयल छी, हम अहीँक स्वप्न छी, अहाँ अनेरे जे सपनामे हेरायल रहैत छी सैह छी हम। अनेरे अहाँके मोन बौआइत रहैत अछि, सब एसगर अछि, तैँ अहूँ एसगर छी, हम अहीँ छी।
1: अहाँ एसगरे छी, सुताई छल कथा जे सुना रहल छली प्रेमलता मिश्र प्रेम। नीक कथा छल, धन्यवाद दिनका। आओ सुनी हमरा लोकनि श्यामा झासँ ई अगला गीत।

सुतै छली श्यामा झा सुना रहल छली झूमर। अश्रोता आजुक भारती में आई बसत बे, अगला कार्यक्रम में फिर भेंटघाट हेतै, गपशप हेतै। ताधर पवन के विदा दियो, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

6:30 पर आज आप सुनेंगे आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एज वेस्टर्न बर्मिंगम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहले बाड़न कि पिछला 12 बरिस में देश के स्वास्थ्य सेवा में खूब सुधार भइल बा। उ कहले कि स्वास्थ्य नगरिक ही देश के सबसे बड़ ताकत बा। सोशल मीडिया पर एगो पोस्ट में श्री नड्डा कहले कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ये डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से बेसी लोग तक इलाज के सुविधा पहुंच रहल बा। श्री नड्डा कहले कि देश में एम्स के संख्या 1 से बढ़ के 23 हो गई बा। वही जा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहले कि भारत सरकार के उद्देश्य ये सुनिश्चित कइल बा कि बीमारी के कारण कोनो परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग के 1,278 करोड़ रुपया के योजना सब के उद्घाटन आ शिलान्यास कैले। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपया के लागत से 2.5 लाख उपभोक्ता लोग के घर के छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगावे के काम के शुभारंभ भी कैले। केंद्रीय सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल बिहार के गया जी जिला के खिजर सराय में एगो नयका प्रौद्योगिकी केंद्र के आधारशिला रखे हैं। ये केंद्र 170 करोड़ रुपया के निवेश से स्थापित कैल जाए। मंत्रालय कहलस कि केंद्र सरकार के लक्ष्य बा कि हर बरिस 7,000 युवा लोग के ट्रेनिंग दिहल जाए और रोजगार सेवा के माध्यम से 1,000 से बेसी उद्यमी लोग के सहायता प्रदान कैल जाए। बिहार के महाधिवक्ता पी के शाही अपन पद से इस्तीफा दे देले बाड़े। हालांकि इस्तीफा के कारण के अभी तक कोनो आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयल। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफा के बाद पी के शाही के 16 जनवरी 2023 के बिहार के महाधिवक्ता नियुक्त कैल गेल रहे। बता दी कि महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होखेलन, जे सरकार के कानूनी सलाह देवे के साथ साथ उच्च न्यायालय और दोसर न्यायिक मंच सब पर सरकार के पक्ष रखेलन। प्रदेश के सभी जिला में स्थित परीक्षा केंद्र पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती खातिर लिखित परीक्षा 2 पाली में आयोजित कैल गेल। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के मुताबिक ये परीक्षा के माध्यम से 4,200 से बेसी पद पर बहाली हुई। यही पद सब पर बहाली खातिर अगला परीक्षा 17 जून के हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होए वाला अभ्यर्थी लोग पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जम के हंगामा कैले। पर्याप्त ट्रेन सेवा उपलब्ध न होके से नाराज छात्र लोग स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव कैले। ऐसे रेलवे के संपत्ति के नुकसान पहुंचल। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा बतौलें कि पुलिस के हस्तक्षेप से

0: हंगामा पर काबू पाके ट्रेन सब के परिचालन सामान्य कैल गेल। असम के जोरहाट हवाई अड्डा पर काले भइल विमान दुर्घटना में शहीद बिहार के दू गो वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार आ अग्निवीर दानिश आलम के पार्थिव शरीर आज पटना के बिहटा वायुसेना स्टेशन पर पहुंचल। ए मौका पर भारतीय वायुसेना दोनों शहीदन के सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देलस। श्रद्धांजलि अर्पित करे के बाद अग्निवीर दानिश आलम के पार्थिव शरीर के भोजपुर जिला के कायमनगर गांव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के पार्थिव शरीर जहानाबाद जिला के बनवरिया गांव भेज दिया गया। प्रदेश में मॉनसून के उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होके गुजर रहा बा। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिला सब में भारी बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक अगला 24 घंटा में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में बुन्नी पड़े के संभावना बा। इस दौरान बिजली गिरला के साथे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा भी चल सकेला। बिहार के तीन गो पारंपरिक उत्पाद नालंदा के 52 बूटी साड़ी आ फैब्रिक, गया के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट आ भोजपुर के पीढ़िया पेंटिंग के GI टैग मिल गेल बा। ऐसे ही उत्पाद सबके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एगो नया पहचान मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ई उपलब्धि पर खुशी जतैलन हँ आ राज्य के शिल्पकार, बुनकर, कलाकार आ संबंधित संस्था सबके बधाई भी देले बाड़े। श्री चौधरी कहलें कि उपलब्धि बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल आ ग्रामीण प्रतिभा के राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के अंक यही जा समाप्त भइल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म रेड 2 से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है जुबिन नौटियाल ने।

0: अंकीय स्थानम अवाप्नोत्। क्रिकेट क्रीडायां भारतम अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजवास्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह स्वस्य आईसीसी महिला टी20 विश्वकप इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। क्रीडा सायं 7 वादनतः आरप्स्यते। महिला टी20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेषु 16 स्पर्धासु 13 स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति इति वार्ताः।
1: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
3: वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का भी शुभारम्भ किया। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गयी। इन पदों पर बहाली के लिए दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 जून को होगी। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इधर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के आरोप लगाते हुए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से किया गया। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। इस अवसर पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 के 4वें वार्षिक सम्मेलन का आज पटना में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हृदय रोगों के आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और जटिल मामलों के प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य का सर्वोच्च कानूनी पद रिक्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो सरकार को कानूनी सलाह देने के साथ साथ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर उसका पक्ष रखता है। असम के जोरहाट एयर बेस में हुए विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर आज पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर भोजपुर जिला और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिले में उनके गांव के लिए रवाना किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का अटूट विश्वास और सेवा भाव है, जिसके बल पर देश आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री चौधरी आज पटना में पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर की वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र और नालंदा को वैश्विक ज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव शुरू की जाएगी। उन्होंने विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तथा पर्यटकों के लिए पटना से गंतव्य तक सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। FM पर समाचार समाप्त हुए।
1: यह आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र पटना है। FM बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर कार्यक्रम आप ही के गीत हाजिर हैं। हम आप सभी की सेवा में आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम के पहले फरमाइशी गीत और पत्र के साथ। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्रानी केवट और कृष्णा केवट की मिली है। साथ ही इस गीत को बेऊर मोड़ पटना से दिव्यांश, शिवांश चुलबुली, युग और इनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने सुनना चाहा है। आपकी फरमाइश पर आइए हम सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा से इस गीत को। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, इंदिवर की रचना है।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में जुड़ते हैं एक और फरमाइश के साथ। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दत्तरंगी से भागवत वर्मा की हमें फरमाइश मिली है। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म श्री 420 से मुकेश और साथियों की आवाज़ में ये गीत, शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आप ही के गीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र पटना से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 होने को हैं। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
2: गरौल वालों कैसे हैं? आस पड़ोस के लोगों आपसे भी पूछ रहा हूं कैसे हैं?
1: प्रायोजक आप सब,
2: मैं हूं आपका राजेश और बहुत ही सही हूं। कार्यक्रम रोजगार लेकर एक बार फिर से हम आ गए हैं। जी हां, आपको पता है कि आपके गोरौल के संस्कार नगर में एसएस प्रोफेशनल और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना श्री राज ग्रुप ने की है और वहां बीसी और बीबीए की पढ़ाई और बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। बार बार कहता है राजेश की टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनके लिए रोजगार की समस्या नहीं होती है। ये कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। सारी व्यवस्थाएं उम्दा हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट अगर बायोलॉजी के साथ किया है आप सबों ने तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप अपने घर में ही अपने करियर की शुरुआत करें, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं। बड़े शहरों के खर्चे से भी बच जाएं और अपने घर पर ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई लिखाई करें। खासकर के कोविड के बाद जब से हेल्थ सेक्टर सामने आया, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लोगों ने, कर्मियों ने हमें बचाया, उस स्थिति में आज भी रोजगार की कमी नहीं है। एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप बीसीए और बीबीए करके आगे बढ़ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी इन पांचों कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर लें 9162413233 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888 9155558888
3: गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नाम कितना अच्छा, गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहाँ से डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी श्रीराज ग्रुप का ही इंस्टीट्यूट है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात हुई थी, आगे जैसा कि हमने बताया हाँ कि ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे। डॉक्टर साहब क्या हुआ उस एपिसोड के बाद? पहले तो आपका स्वागत है आज के एपिसोड में।
4: स्वागत है प्रयास कर और बच्चों ने बहुत जिज्ञासा दिखाई और बहुत अच्छे से इसको रिलेट किया और लोगों ने बहुत उत्सुकता के साथ वहां आकर करके और बहुत अच्छा लगा और जो हमने कहा है उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं और उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं। जैसा कि पहले ही आप लोग जो सब लोग जानते हैं कि श्री राज ग्रुप जो है वह निश्चित रूप से सफल, सरल और सरल चिकित्सा उपलब्ध कराता है, उसके साथ साथ शिक्षण संस्थान को संचालित करता है। तो हमारा आज भी वही है, तो लोग सब बड़े बड़े बातें करते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े उसको रिजल्ट देते हैं, यही हमारी विशेषता है।
3: एक सवाल आया था डॉक्टर साहब, इसका जवाब हम चाहते हैं आप दे दें, है ना। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के लिए जहां प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि जो गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है और आपने चर्चा कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल खुलने वाला है या पटना में श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल इस ग्रुप का है, यहाँ प्रैक्टिकल या फिर आप पीएससी से एसोसिएट करेंगे उनको, तो जानना चाहते हैं कि क्या इस संस्थान के साथ हॉस्पिटल का होना आवश्यक है?
4: बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है और धरातल पर सिर्फ

0: कागज पर नहीं। तो एक बात ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को निश्चित रूप से अपना अस्पताल होना जरूरी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अपना अस्पताल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बेसिक चीजों की जानकारी होने के लिए सबसे पहले अपना अस्पताल होना चाहिए और एडवांस के लिए एडवांस हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो बेसिक चीज के लिए अपना अस्पताल अगर नहीं रहेगा संस्थान के पास तो बेसिक चीजें कैसे सीख पाएंगे। और खुद अभी एक डॉक्टर के होने के नाते मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर पैरामेडिकल नर्सिंग के क्षेत्र को अगर विकसित करना है तो उसको बेसिक चीजों को डे टू डे से ही उसको ज्ञान दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह एडवांस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। कई कई थोड़ी छोटी बेसिक चीजें भी बहुत बड़ा कारगर होता है मरीज को ठीक करने में। तो बेसिक चीज को बताना जरूरी है, फंडामेंटल जितना भी जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, फंडामेंटल जितने भी प्रक्रियाएं होती है नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, इसको मैं हम लोग सब लोग सबको उसको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपना अस्पताल होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, अगर रेगुलर क्लासेज और रेगुलर प्रैक्टिकल अगर चलता है तो बच्चों में उत्साह भी बढ़ता है, जिज्ञासा भी बढ़ती है और पढ़ने की ललक भी बढ़ती है। तो ये हमारा मूल मंत्र ही रहा है कि हम बच्चों को उन्नत शिक्षा के साथ साथ बेहतर प्रैक्टिकल और बेहतर क्लासेस देने का हमेशा काम कार्य करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा पूंजी है,
1: सबसे बड़ा पूंजी है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, इसलिए दिमाग में यह बैठा लीजिए कि हेल्थ से संबंधित कहीं भी अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसका अपना अस्पताल होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लासरूम स्टडी के बाद अगर सामने प्रैक्टिकल आपको मिल जाए ना, तो आपके कंसेप्ट क्लियर बहुत जल्दी हो जाता है और आप उसका लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि फील्ड में करके तो आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें ही आपको जाननी होंगी।
0: लगातार हम दो साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं गुरल में। आप जाकर करके कंस्ट्रक्शन लगभग हमारे अनुकूल हुआ है और तब से हमने इसको शुरुआत किया है। तो दोनों कोर्सेज, दोनों तरह फैकल्टी के कोर्सेज, जैसे बीबीए बीसीए का और उसके बाद पैरामेडिकल और नर्सिंग का, ये शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसका अभी भी हमारे अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो उन बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, कि हम बहुत जल्द उसको पूरे कर लेंगे और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। सुनहरा भविष्य पैरामेडिकल के साथ नर्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पैरामेडिकल को और नर्सिंग का क्षेत्र को ऑफ कीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा मांग वाली क्षेत्र है और सबसे सहज और सुलभ आपको मुकाम तक ले जाता है। नौकरी के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो बच्चों के लिए अभी के क्षेत्र में तो नर्सिंग का क्षेत्र है।
1: यही सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इनका कंफ्यूजन क्लियर कर दें। ये जो संस्थान सुन रहे हैं, गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार में आप सुनते थे ना एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उसी ग्रुप का और सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्रीराज ग्रुप, जो कि पटना में है। बुधवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम पैरामेडिकल है, पारस श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बातचीत करनी चाहिए, गार्जियंस आपके लिए भी मैं बात बोल रहा हूँ, माता पिता, बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो 9162413233 डॉक्टर साहब का एक नंबर ये है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888 यानी 9145 और 48। और ये संस्थान है जो है अपना गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोरौल स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा बीएससी की तरफ बढ़िएगा तो संस्कार नगर है। लेकिन अगर आप गोरौल स्टेशन से आ रहे हैं तो दाएं बाएं तरफ आपको ये संस्थान पड़ेगा। डॉक्टर साहब, रोजगार से संबंधित बातें कुछ लोगों ने पूछी है, शंका व्यक्त किया है कि क्या यहाँ गोरौल जैसे छोटे जगह से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या बीबीए का कुछ भी, तो क्या रोजगार मिलने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी? संस्थान गाँव का है तो
0: एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों भी आपको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कोई जगह छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी मान्यता होती है और मान्यता सरकार देती है। हमारा जो काम होता है, कॉलेज का जो काम होता है, सरकार के करिकुलम को पूरा करना, सरकार के

0: उसको जो सिलेबस है उसको पूरा करना और सरकार का काम होता है परीक्षा लेना और सर्टिफिकेट देना और बच्चों तुम्हारा काम है पढ़ करके पास करना पढ़ाई करके पास करना ये तो आपका काम है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं। अगर हमारा सिलेबस जितना है उसे हम पूरा कराते हैं अगर तुम क्लास कर लिया तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। एक बात है। दूसरी बात तुम जो है वो रिकॉग्नाइज स्थान में एडमिशन लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा सरकार लेगी और सरकार सर्टिफिकेट देगी। इसके लिए भी उसमें सरकार उसमें ये नहीं लिखा हो रहता है कि कहाँ का इंस्टीट्यूशन उसमें ये लिखा था है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त और उसके बाद ये लिखा हो रहता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रहता है। तो यह सब लोग को पता है कि बिहार स्वास्थ्य जब खुद सर्टिफिकेट देगी तो इसमें ई फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए निश्चिंत होकर करके आप एडमिशन ले सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं
1: और भैया राजेश तो हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और उसमें अगर हेल्थ में आपने पढ़ाई कर ली है ना तो स्वरोजगार सरकारी क्षेत्र में रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की वैसे संस्थान से पढ़ाई की अगर आपने हेल्थ सेक्टर में जहाँ क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आपको प्रॉपर सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब का नंबर हम बता रहे हैं आप नोट कर लीजिए 9162413233 और 9155558888 और गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम याद रखिए गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्री राज ट्रस्ट ग्रुप का ये संस्थान है श्री राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का सिस्टर कंसर्न है जो गोरल में खोला गया जिस कैंपस में एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बीसी और बीबीए के लिए है उसी कैंपस में है ये उसी कैंपस में है ये और आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। बहरहाल एक सवाल तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं पैसे की उस तरीके से बहुत नहीं है बहुलता नहीं है क्या जो मिलेगा 4 लाख रुपया उसी में हमारा ये तीनों कोर्स अगर हम कोई भी करना चाहें तो हो जाएगा क्या?
0: देखिए दो कोर्स में है इसमें बिहार सरकार ने मर्ज दी है वो स्टूडेंट क्रेडिट का उसमें से जीएनएम है अंग्रेजी नर्सिंग है एएनएम को डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत रखा है सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत रखा है तो उसमें बिहार सरकार अनुदान नहीं देती है। हाँ उसमें स्कॉलरशिप मिलता है स्कॉलरशिप तीनों में मिलता है उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पैसे मिलते हैं जीएनएम और बीएससी में लेकिन बाकी एएनएम जो है वो सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता है। जीएनएम में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उसके बाद स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं बीएससी में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं। तो इस तरह से यही व्यवस्था सरकार ने बनाई है और तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको भी चलना होता है
1: एकदम हमको भी चलना होता है लेकिन हम चल के आ गए गोरल आपके पास गोरल में आ गए हैं बीएससी नर्सिंग जीएनएम आईएनएम सारे कोर्सेज को और पहले से बीबीए और बीसीए है एसएस प्रोफेशनल में कैंपस एक है आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब आए और जानकारियां देकर चले गए। जी हाँ अपने व्यस्त समय में से डॉक्टर साहब आते हैं समय निकाल कर और जानकारियां देते हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी संपूर्ण समाज का विकास होगा और ऐसे में डॉक्टर साहब ने आपकी बातें सुनी और गोरौल में उन्होंने 5 जी हाँ प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है इसी सत्र से बीसीए बीबीए और हेल्थ के सेक्टर में बीएससी एएनएम जीएनएम जी हाँ बीएससी नर्सिंग है एएनएम है और जीएनएम है आपके लिए सहूलियत। गोरौल के आसपास जितना भी इलाका है वैशाली का मुजफ्फरपुर का या इधर छपरा की तरफ का सारे लोग आ सकते हैं पटना के लोग भी जा सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छा माहौल बहुत ही अच्छा कैंपस बहुत ही अच्छी फैकल्टी सारी चीजें हैं और पढ़ाई वैसी करनी चाहिए ना जो अर्थोपार्जन कर सके। नंबर नोट करें ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 9162413233 और दूसरा नंबर है ध्यान से सुनिएगा 9155558888 9155558888 हम तो यही

0: यही चाहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। थैंक यू गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार कार्यक्रम लेकर आने का मौका जो आपने दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
2: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिखना पहाड़ी पटना 4।
4: सोचना सुनिए श्रोताओं, आपका मनपसंद कार्यक्रम
5: ममता का आंचल, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम।
4: 35 मिनट से
5: लीजिए, अब सुनिए
4: 30 मिनट तक
5: प्रायोजित कार्यक्रम
4: इनफॉरमेशन
5: रोजगार
4: हम करेंगे बुधवार प्रातः 11।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
0: गोरल वालों कैसे हैं? आस पड़ोस के लोगों आपसे भी पूछ रहा हूं, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका राजेश और बहुत ही सही हूं। कार्यक्रम रोजगार लेकर एक बार फिर से हम आ गए हैं। जी हां, आपको पता है कि आपके गोरल के संस्कार नगर में SS प्रोफेशनल और गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना श्री राज ग्रुप ने की है और वहां BC और BBA की पढ़ाई और BSc नर्सिंग, ANM और GNM की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। बार बार कहता है राजेश की टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनके लिए रोजगार की समस्या नहीं होती है। ये कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। सारी व्यवस्थाएं उम्दा हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट अगर बायोलॉजी के साथ किया है आप सबों ने तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप अपने घर में ही अपने करियर की शुरुआत करें, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं, बड़े शहरों के खर्चे से भी बच जाएं और अपने घर पर ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई करें। खास करके कोविड के बाद जब से हेल्थ सेक्टर सामने आया, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लोगों ने, कर्मियों ने हमें बचाया, उस स्थिति में आज भी रोजगार की कमी नहीं है। SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप BCA और BBA करके आगे बढ़ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी इन पांचों कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर लें 9162413233 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888 9155558888 गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इतना अच्छा गोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ से
5: याद करो कुर्बानी।
0: प्रियदर्शी श्रीराज ग्रुप का ही इंस्टीट्यूट है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजी वर्मा का प्यार प्यार नमस्कार।
0: बताया हाँ कि ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे, डॉक्टर साहब क्या हुआ उस एपिसोड के बाद? पहले

प्रक्रियाएं होती है नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, इसको हम लोग सब लोग सबको उसको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपना अस्पताल होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, अगर रेगुलर क्लासेज और रेगुलर प्रैक्टिकल अगर चलता है तो बच्चों में उत्साह ही बढ़ता है।

0: लेकर क्लासेस देने का हमेशा काम कार्य करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा पूंजी है,
1: सबसे बड़ा पूंजी है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, इसलिए दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हेल्थ से संबंधित कहीं भी अगर कोई
2: हमारे भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की स्वर्ग था, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही है। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को छोड़ने। धन है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मी है।
3: इनका सेवा वफा बरसती है,
0: यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा मांग वाले क्षेत्र है और सबसे सहज सुलभ आपको मुकाम तक ले जाता है। नौकरी का ये सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो बच्चों के लिए अभी के क्षेत्र में नर्सिंग का क्षेत्र है।
1: एक सवाल पूछेंगे आपसे, ये जो संस्थान सुन रहे हैं मोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, रोजगार में आप सुनते थे एनएसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सबका प्रेरित जो कि पटना में बुधवार को आप सुनते कार्यक्रम पारा मेडिकल है, पारस ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो बातचीत करनी चाहिए, बातचीत आपके लिए भी मैं बात बोल रहा हूँ, माता पिता बड़े भाई बहन जो भी हैं 9162413233 डॉक्टर साहब का एक नंबर दिया है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888 यानी 9 8 4 2 5 5 8 8। और ये संस्थान है जो है अपना मोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मोरल स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा ये सीधे तरफ बढ़िएगा तो संस्थान अगर आप मोरल स्टेशन से आ रहे हैं।

0: जी ने कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा के महत्व फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनकी मान्यता होती है अटल और मान्यता सरकार देती है।
1: हमारा जो काम होता है, कॉलेज का जो काम होता है, सरकार के करों के
0: कदम बढ़ा लेते हैं आगे, तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। जो सिलेबस है तो बस उनके शरीर

0: और सरकार का काम होता है परीक्षा लेना,
1: तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है।
0: धन है, करके पास
1: धन है, ऐसे भी
0: पढ़ाई करके पास कर दे, ये तो आपका काम है। बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं। अगर हमारा सिलेबस जितना है उसे हम पूरा करते हैं, अगर तुम क्लास कर लिया तो तुमको

सरकार लेगी और सरकार सर्टिफिकेट देगी। इसके लिए भी उसमें सरकार उसमें ये नहीं लिखा होता है कि कहाँ का इंस्टीट्यूशन, उसमें ये लिखाता है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त, और उसके बाद ये

0: एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं,
1: एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और भैया राजेश तो हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और उसमें अगर हेल्थ में आपने पढ़ाई कर ली है ना, तो स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की। वैसे सर

0: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं। तो इस तरह से यही व्यवस्था सरकार ने कर रही है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको भी चलना
1: होता है।

राय और जानकारियां देकर चले गए। जी हाँ, अपने व्यस्त समय में से डॉक्टर साहब आते हैं, समय निकाल कर और जानकारियां देते हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी संपूर्ण समाज का विकास होगा, और ऐसे में डॉक्टर साहब ने आपकी बातें सुनी और गुड़ौल में हाँ उन्होंने पांच जी हाँ प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है इसी सत्र से। BCA, BBA और हेल्थ के सेक्टर में BSc, ANM, JNM, जी हाँ BSc

पढ़ाई वैसी करनी चाहिए ना जो अर्थोपार्जन कर सके। नंबर नोट करें, ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 9162413233 9162413233 और दूसरा नंबर ध्यान से सुनिएगा 9162413233।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध

जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

साथियों विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की

0: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।
2: पिछले 12 वर्षों में देश में आयुष्मान योजना से करोड़ों
1: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहाँ ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

वतन की तुम पे है, वतन की तुम पे है, वतन की तुम पे है, इंसान के हम रखवाले, वतन की हम पे है, वतन की हम पे है, वतन की हम पे है, इंसान के हम रखवाले, संस्कृति हमारी भट जाते।

मन में विंध्याचल का बल है, मन में

हम बनाते हम

वतन वतन की हम पे है हिम्मत, वतन की हम पे है इज्जत, वतन की हम पे है इंसान के हम रख।

सर वतन की हम से है किस्मत वतन की हम से है वतन की हम से है इंसान के हम रखवाले आकर हम

के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य का सर्वोच्च कानूनी पद रिक्त हो गया है। हालांकि इस्तीफे के कारण की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पीके शाही बिहार की राजनीति और विधि जगत का एक जाना पहचाना नाम है। वे सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार का प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देने के साथ साथ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर उसका पक्ष रखता है। बिहार के तीन पारंपरिक उत्पादों, नालंदा के 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई दी। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। नालंदा जिले की प्रसिद्ध 52 बूटी बिहार की प्राचीन बुनकरी परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस विशिष्ट वस्त्र कला में कपड़े पर 52 प्रकार के पारंपरिक बौद्ध एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के हथकरघे से

0: बुना जाता है। इस कला में प्राकृतिक रंगों एवं पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से लोक जीवन, पारिवारिक संबंधों, धार्मिक आस्थाओं और ग्रामीण संस्कृतियों का सजीव चित्रण किया जाता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस अवसर पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों ने रक्तदान किया। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आज पटना में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हृदय रोगों के आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और जटिल मामलों के प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी भारती ने कहा कि मोटापा, तनाव और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।
1: जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का वो बढ़ रहा है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए नए रिस्क फैक्टर में जैसे कि ओबेसिटी, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इसके अलावा जो फिक्स एजिंग है, इसके अलावा स्मोकिंग है, लिपिड है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हाइपरटेंशन, ये सब सारी बातें जो एक्चुअली एजुकेशन का अभाव है भारतीय लोगों में। समझना पड़ेगा कि किस चीज का हार्ट अटैक होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
0: असम के जोरहाट एयरबेस में विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के दो वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर आज पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर भोजपुर जिला और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिले के लिए रवाना कर दिया गया। प्रदेश में मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 15 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रोहतास पुलिस ने फ्लिपकार्ट के महंगे सामानों की हेराफेरी कर ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के कोचस बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल वाहन को मोहनिया से बरामद कर लिया है। एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
1: अररिया जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम में ठंडक बनी हुई है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। विशेषकर धान की रुपाई और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी के लिए यह बारिश लाभकारी साबित हो रही है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर प्रभारी सचिव मोहम्मद सोहेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी विनोद तुहन, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले की 72 पंचायतें पूर्ण रूप से तथा 60 पंचायतें आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं। बैठक के दौरान 15 जून तक तटबंधों की मरम्मत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 165 नावें, 10 मोटरबोट, 40,790 पॉलीथीन शीट्स, 135 लाइफ जैकेट सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 397 सामुदायिक रसोई केंद्र तथा 363 राहत शिविर भी चिन्हित किए गए हैं। प्रभारी सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खातों में पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। अररिया जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,59,648 लाभुकों के खातों में 30,34,00,000 रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस अवसर पर अररिया समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को पेंशन की राशि लाभुकों के खातों में अंतरित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जून 2026 से अररिया जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, टिकाऊ और लाभकारी कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक बनाना है। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत जिले में 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हस्तलिखित पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण कार्य जारी है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में कुल 176 पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पुस्तक प्रेमियों तथा निजी संग्रहकर्ताओं से अपील की गई है कि यदि उनके पास ताड़पत्र, कागज अथवा ताम्रपत्र पर लिखी गई 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक या सामाजिक महत्व हो, तो वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत किसी भी संग्रहकर्ता से मूल पांडुलिपि नहीं ली जाएगी, केवल पांडुलिपियों का फोटोग्राफ और आवश्यक विवरण ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उनका डिजिटल अभिलेख तैयार किया जा सके।

0: जिले के सभी प्रखंडों में आगामी 17 और 18 जून 2026 को 2 दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी की तरीके से पहुंचना है। इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, दस्तावेजों का सत्यापन, EKYC प्रक्रिया, लंबित मामलों का निष्पादन तथा स्वीकृत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में आम जनता को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविर में सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक प्रखंड में संबंधित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार की संयुक्त अगुवाई में अररिया और जीरो माइल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सड़क किनारे सुरक्षा क्षेत्र तथा राइट ऑफ वे पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले से होकर गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी,
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आप भी हो? ठहरो ठहरो।
1: पाए लगी पटवारी ताई?
3: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
3: वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राह भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
3: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
3: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
4: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
4: अच्छा आओ, बैठ बैठ, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, भगवान ने कृपा की है, लड़की की शकल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
4: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
4: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
4: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
4: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
4: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को।
1: अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
2: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हैं। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
1: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे दूसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
2: अरे आप पुरवा,
3: अरे तुम यहाँ खड़े, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
2: काहे क्या हुआ भगवान?
3: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
2: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
3: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गए, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
2: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
3: हमारे दिन फिर गए हैं, बहुत भगवान।
2: क्यों नहीं,
3: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखू।
2: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
3: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
2: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
3: हाँ? जाओ, जाओ,
4: जाओ।
2: अरे मंगरू, मंगरू तो क्या बात है माधो, अरे चौधरी जी आ गए। हाँ? चौधरी जी

0: देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ,
0: मैं अभी आता हूँ।
1: ठीक है,
0: मैं भी आता हूँ।
2: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
1: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी,
2: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
1: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
2: मेरी रकम दे रहे हो ना
1: जी।
2: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
1: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब
2: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
1: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
2: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
1: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म
2: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
1: चौधरी जी मालिक, मालिक
2: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, कुछ भी दया कीजिए,
2: की जाती है जो उसके काबिल हो। तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
1: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। आप
3: मंगरू
1: पटवारी जी, पटवारी जी
3: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पाँव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
2: 3,000।
3: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
2: जी आप?
3: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
2: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलो, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
3: अच्छा भैया जय राम जी।
1: पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
3: मंगरू तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं।
1: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
3: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
1: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
3: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
1: नहीं, वो क्या पटवारी जी?
3: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
1: पर गलती उसी की पटवारी जी।
3: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
1: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
3: देखो
1: क्या करूँ,
3: रूप सिंह से समझौता करो।
1: लेकिन
3: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा।
1: ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
3: कौन से रुपए भाई?
1: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
3: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
1: काहे?
3: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
1: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
3: अच्छा ये लो मंगरू,
1: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
3: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को दूंगा।

0: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
1: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
1: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?
1: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
0: अच्छा,
1: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
0: 11,000?
1: हाँ भाई,
0: सच सच कह रहे हो पटवारी जी?
1: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
0: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
1: लेकिन अब फजूल खर्च मत कर।
0: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
1: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर, कागज के जेवर, कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से
0: आ गए। पंडित जी, चलिए आइए पटवारी जी, आइए आइए,
1: चलो चलो।

कागज के जेवर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

बात है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक

0: वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की उन्होंने सबसे लंबे समय तक

0: भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर

0: कर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. focus on

0: बिला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैखों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैखों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैक्रों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के इख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से

0: भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर भी मुबारकबाद दी।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तिराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ

0: भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकत दारी को मुस्तहकम करें। वजीर आजम मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
2: GST को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकत दारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें अवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पेशरफ्त, पॉलिसी असलाहत, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निज़ाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबाइसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्की

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जब

0: कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ।

0: रहे थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: बिन।
1: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
2: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र पटना से बोल रहे हैं। एफएम एंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजे हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको बजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: जब से बेकरार।
1: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
0: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
1: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट
3: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

यह आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र पटना है, FM बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

यह आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र पटना है, एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। आईना फिल्म से आप सुनेंगे लता मंगेशकर को समीर की रचना के लिए, दिलीप और समीर सेन की तर्ज है।